0: It's all waste, actually. maximum times, you know.
1: तो उसमें कई thoughts बहुत powerful, positive होते, कई negative होते हैं, गुस्सा, resentment, चिंता, कई necessary होते हैं कि ये करना है, आज ये जान, और बहुत सारे waste होते हैं. Waste मतलब बहुत ज़्यादा जो बीत गया, या बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचना जो अभी हुआ ही नहीं, तो उसमें कोई पावर नहीं है, क्योंकि इट इज़ नॉट इन माई कंट्रोल, नीदर द पास्ट नॉर द फ्यूचर. तो इतनी सारी हमारी थॉट्स की स्पीड है. आर वी एवर अवेयर कि हम एक मिनट में 25 to 30 थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं? तो इसलिए बहुत फास्ट है. तो जब हम मेडिटेशन में बैठते तो ये धीरे धीरे स्लो होता. मेडिटेशन भी नहीं, अगर आप सिर्फ इसको वॉच करना शुरू कर दो, ये स्लो डाउन हो जाएगा. यू विल गेट टू सी द स्पीड. और तब अगर इसको हम थोड़ा सा भी स्लो करते तो हमें लगता है ये तो हमने सोचना ही बंद कर दिया. तो सोचना बंद नहीं किया, लेकिन सोचने की स्पीड को बहुत स्लो कर दिया है. तो हैप्पीनेस मीन्स व्हेन माय थॉट्स डोंट गो लाइक दिस, बट दे आर एब्सोल्युटली स्टेबल. एक कंटेंटमेंट, एक इनर पीस. हम बहुत सारे वर्ड्स यूज करते हैं कि संतुष्टता क्या है, सेटिस्फैक्शन क्या है, पीस क्या है. इट्स ऑल दिस फीलिंग वेयर यू आर इनसाइड एक्चुअली जस्ट कंफर्टेबल. जब भी ऐसे ऐसे कुछ भी होता है वो कंफर्टेबल नहीं होता, लेकिन आप बिल्कुल स्टेबल हैं, कंटेंटेड हैं. दिस इज हैप्पीनेस. हैप्पीनेस इज नॉट एक्साइटमेंट. एक्साइटमेंट इज डिफरेंट. हमने आइसक्रीम खाई आज, कहते आई एम वेरी हैप्पी आफ्टर, दैट्स नॉट हैप्पीनेस. वो तो एक सेंसेशन है. एक सेंसेशन थी टेस्ट बड के द्वारा मुझे मिली, एंड दैट इज यू नो गिविंग मी दैट सेंसेशन. आई से दिस इज हैप्पीनेस. सपोज लेट्स से कि मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन आज कुछ हुआ तो वो ठीक हो गया. आई एम वेरी हैप्पी, यू नो माई, दिस इज नॉट हैप्पीनेस. वो दर्द था, आई हैव गॉट रिलीव्ड फ्रॉम माई पेन, सो इट्स अ रिलीफ. देन आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट समथिंग दैट हैज हैपन. लेकिन हम इन सारी चीज़ों को नाम क्या दे देते हैं? हैप्पीनेस. और इस प्रोसेस में हैप्पीनेस एक्चुअली क्या है वो भूल जाते
0: हैं. तो वो जो सारी चीजें अगर हमें नहीं मिल रही हैं तो हम वी से दैट वी आर नॉट गेटिंग हैप्पी.
1: या दैट्स व्हाई. एंड देन वी स्टार्ट लुकिंग फॉर इट आउटसाइड. तो हैप्पीनेस चाहिए नहीं एक्चुअली. कुछ भी नहीं करना है खुश रहने के लिए. खुश हम ऑलरेडी हैं. सी इट्स अ डिफरेंट थिंग. एक है कि यहाँ यू नो इट्स लाइक अ ग्लास. आई एम गोइंग थ्रू लाइफ टूडे विद द फोकस कि ये जो मेरा ग्लास है ना ये खाली है, प्लीज इसको भरो. कुछ ना कुछ ऐसा होता जाए जिससे ये भरता जाए. जस्ट चेंज द फोकस वन डे कि ये ग्लास ऑलरेडी भरा हुआ है. अब सिर्फ सारा दिन क्या करना,
0: इसको बाहर नहीं जाने देना,
1: संभाल के चलना है कि हर छोटी छोटी बात में ये स्पिल ऑफ नहीं कर जाए. क्योंकि ये इतना जल्दी स्पिल ऑफ करते जाते हैं सारा दिन में, फिर एट द एंड ऑफ द डे वी फाइंड आवरसेल्व्स वेरी एम्प्टी, वेरी डिप्लीटेड.
0: बट दिस बिकम्स वेरी बोरिंग.
1: अगेन अगर आपने एक्साइटमेंट को अपनी हैप्पीनेस के साथ रिलेट कर दिया
0: तो जब वो नहीं होगी तो आप,
1: हाँ, और एक्साइटमेंट भी बहुत हेल्दी नहीं है एक्चुअली माइंड के लिए. एंड जैसे फियर है तो वो लो स्टेट है, एक्साइटमेंट उसका अदर ऑपोजिट है. तो ये दोनों चीजें स्टेबिलिटी नहीं है. और फिर हम दोनों
0: एक्चुअली हम दोनों में वी से दैट इट्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, यू नो
1: इट गिव्स अ वेरी
0: पिट ऑफ माय स्टमक. ऐसे कुछ फील होता है, चाहे डर लग रहा है, चाहे बहुत खुशी हो रही हो.
1: एंड दोनों चीजों में आपको अपनी फिजियोलॉजी पर इम्पैक्ट दिखाई देगा
0: शरीर पर.
1: यहाँ नॉर्मल नहीं रहता है आपकी हार्ट. एक्साइटमेंट में आपकी हार्ट बीट नॉर्मल है नहीं, डर में भी आपकी हार्ट बीट नॉर्मल, आपकी पल्स रेट नॉर्मल, एनीथिंग दैट्स नॉट नॉर्मल. Now we know this is what is abnormal, but we thought ये normal है. See, मन पर तो शायद हमें अभी नहीं पता चले कि कितना impact पड़ रहा है. Physiology पर तो दिखाई दे रहा ना. तुरंत you will find your heart beating so fast. How's that normal? The happiness is that stability. तो अब क्या होगा, situation specific नहीं है. अब चाहे कुछ भी हो जाए सारा दिन मेरे आसपास, मुझे सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मुझे अपनी ये stability को नहीं खोना है. इट डजेंट मीन मैं कुछ नहीं करूं, मैं कुछ नहीं कहूं किसी को. बच्चे ने कुछ गलत किया, मैं कहूं या नहीं कहूं? कहें, लेकिन दो चॉइसेस हैं. या तो गुस्सा होकर कहें, डिस्टर्ब होकर कहें, या फिर स्टेबल रहकर करें. वो पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल? बी थॉट रिएक्ट करना, गुस्से से बोलना, डिस्टर्ब होना, दिस इज द ओनली वे टू डिसिप्लिन समबडी. सुनो, सो व्हाट वी कुड ट्राई वन डे इज डू एवरीथिंग. आपको काम करवाना है लोगों से, आप काम करवाओ, डिस्टर्ब हुए बना. और इसको सिर्फ एक दिन का एक्सपेरिमेंट करना है. वी ऑलवेज ट्राई दिस एज अ 24-hour एक्सपेरिमेंट. 24 घंटे इसको ट्राई करना है कि आज एक दिन चाहे कुछ भी हो जाए मेरे आसपास. एंड कुछ भी देन मीन्स कुछ भी, कुछ भी.

0: just one day, I will not get disturbed. Mm. Just one day. I will do everything just with this remembrance, aaj ek din stable. Or you will realize, ye bahut, bahut easy hai. It's sirf kiya nahi tha abhi tak. Traffic mein atke, ye kya ho raha hai, kaise ho raha hai, nahi. Kisi ne wrong side se overtake kar liya, kaise chalate hain, pata nahi inko license kaun de deta, aise hi hai, ye to, ye hai sara din. Sirf ek din, wo nahi karna hai. Sab kuch karna hai, sirf ek din. Disturb nahi hona, stable rehna. And you will realize iske liye koi vidhi, koi tarika sikhna nahi hai kahin se. Isko sirf yaad rakhna hai ki mujhe ek din stable rehna. And you see how much energy you will save. Definitely.
1: So ye jo stability hai, ye hame kitni strength deti hai aur kitna hame energy deti hai actually. कितना कुछ और करने के लिए करती है. तो ये हम अपने साथ करेंगे, ये एक्सपेरिमेंट हमारे लिए रहेगा. और आपसे हर बार कहेंगे कि कुछ भी जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो कुछ भी आप समझ पा रहे हैं, उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, खुला निमंत्रण हर बार की तरह. तो या तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फोन पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर्स हैं 0124-266-7000, 9999-3445, 9999-3446, 9873666555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. सिस्टर शिवानी, जो जो आज हमने समझा है उसे हमने किया तो है, ट्राई किया है उसे समझे, लेकिन एक और बात समझ में आई हुई है कि साइलेंस में जैसे बैठते हैं वो डीप हमारे सबकॉन्शियस में जब बैठने लगता है उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है. तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ मिनट अगर हम रिफ्लेक्ट करें.
0: कम्फर्टेबल होकर बैठे और अपने थॉट्स को कॉन्शियसली क्रिएट करने का प्रयास करें. लेट मी लुक एट माई सेल्फ, द क्रिएटर, द मास्टर, द पावरफुल बींग. आई, द क्रिएटर ऑफ एवरी थॉट, हैज़ अ चॉइस. मेरे आसपास चाहे कुछ भी हो जाए, आई चूज स्टेबिलिटी. चाहे कोई कुछ भी कहे, आई चूज स्टेबिलिटी. और जैसे ही आई रिमेन स्टेबल, सिचुएशन परिवर्तन हो जाती है. एक क्षण के लिए अपने आप को उस व्यक्ति के सामने देखें जो आज दिन तक हम समझते थे कि ये मुझे गुस्सा दिलाता, ये मुझे डिस्टर्ब करते. अपने आप को उनके सामने देखिए, वो वैसे ही है, वैसे ही बोल रहे हैं, वैसा ही व्यवहार. लेकिन अपने आप को देखें, आई एम स्टेबल. उनके बोल, उनके व्यवहार मेरे मन पर प्रभाव नहीं डाल सकते. आई चूज माई रिस्पॉन्स बिकॉज आई एम द पावरफुल बींग. ओम शांति.
1: ओम शांति. अगर इन रिफ्लेक्शंस को देखें तो कहीं ना कहीं वो शक्ति जो बाहर से तलाश रहे थे, इन सॉफ्ट इमोशंस, जिन्हें हम सॉफ्ट इमोशंस कहते थे, चाहे वो हैप्पीनेस था, पीस था, लव था, वो मुझे कितना शक्तिशाली बनाता है. तो आज खुशी की और शांति की, स्टेबिलिटी की इस शक्ति को अपने अंदर महसूस करने का प्रयास करें. आज इतना ही, आगे मुलाकात होगी. ओम शांति.

0: विवेकानंद की पारिवारिक पृष्ठभूमि से आप परिचित हुए। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व अपने आप अलग थलग रूप से विकसित नहीं होता। व्यक्ति आज जो है वो उसकी वंश परंपरा और पारिवारिक तथा सामाजिक वातावरण का फल है। विवेकानंद को एक संस्कारवान परिवार मिला था, जिसके फल स्वरूप उन्हें उपयुक्त गुरु श्री रामकृष्ण देव मिले और उनके चहुमुखी व्यक्तित्व और शौर्य का विकास हुआ। उनकी प्रतिभा बचपन से ही दिखने लगी थी। निराला था उनका बचपन। बालक नरेंद्रनाथ की सभी बातें निराली थीं। वे चंचल, नटखट, शरारती तो थे पर साथ ही भावुक भी थे। अगर बालक नरेंद्रनाथ के मन में कोई बात घर कर जाती तो उसे पूरा किए बिना वे नहीं मानते। कभी कभी वे चुपचाप किसी सोच में उलझ जाते। उन्हें समय, भूख, प्यास का ध्यान नहीं रहता था। उनका सबसे ज्यादा मनपसंद काम था गाड़ी पर सवार होकर घूमने जाना। उस समय घोड़ा गाड़ी यानी बग्घी का जमाना था।
1: माँ की गोद में बैठकर गाड़ी में से दोनों ओर की चीजें देखते हुए एक के बाद दूसरा प्रश्न पूछते हुए बालक माता को हैरान कर डालता था।
2: माँ, माँ, उधर वह सुंदर बंगला किसका है?
3: वो तो मजुमदार महाशय का है। बड़े नामी वकील हैं वे।
2: अरे अरे देखो तो माँ, वो आदमी क्या बेच रहा है?
3: उस फल को जामरूल कहते हैं। एक दिन ना मैं तुम्हें वो फल खरीद कर खिलाऊंगी, ठीक है?
2: अच्छा माँ, माँ वो आदमी ऐसे फटे गंदे कपड़े पहनकर लोगों से क्या मांग रहा है?
3: अरे वो तो गरीब भिखमंगा है बेटा, लोगों से पैसे मांग रहा है।
2: क्यों, उसके पास पैसे नहीं है?
3: नहीं बेटा। अरे कोचवान, कोचवान जरा गाड़ी तो रोको जल्दी। लो बिले, उसे ये पैसे दे दो, भूखा लग रहा है।
2: हाँ दो, ये लो बाबा, कुछ खा लेना।
3: चलो चलो कोचवान चलो।
2: माँ लोग गरीब क्यों होते हैं? मेरे पास जब ढेर सारा पैसा हो जाएगा तो मैं इन सबको बांट दूंगा, कोई भूखा नहीं रहेगा।
3: हाँ बेटा, हमेशा मन में ऐसा ही दया भाव बनाए रखना, गरीबों की मदद करना।
2: अच्छा माँ।
3: ओ बिले, दो घड़ी चुप नहीं रह सकता, चुपचाप बैठे रहो।
0: गाड़ी से नरेन को इतना प्रेम था कि रोज अपने घर के सामने बैठकर आते जाते हर एक गाड़ी को बड़े ध्यान से देखा करते। कोचवान का छाती फुलाकर बैठना, तेज दौड़ते घोड़े की लगाम को खींचकर उसे हांकने का कौशल, उसकी खास पोशाक, चपरास, जरीदार पगड़ी आदि का उसके बालक मन पर विशेष प्रभाव पड़ा। तभी तो एक दिन पिता के ये पूछने पर,
4: बड़ा होने पर क्या बनेगा नरेन, बोल तो।
2: घोड़े का कोचवान बनूंगा।
0: पिता हंसने लगे। कोचवान बनने की आशा से बालक ने अपने पिताजी के बूढ़े कोचवान के साथ मित्रता कर ली थी और मौका मिलते ही अस्तबल में जाकर वो सईफ और कोचवानों के कामों को देखा करता और हजारों सवाल किया करता। सईफ से पूछता,
2: तुम रोज रोज घोड़े की मालिश क्यों करते हो?
5: भैया, इससे घोड़ा ताकतवर और तेज दौड़ने वाला बनता है।
2: अच्छा, तो मालिश करवाने पर मैं भी ताकतवर और तेज तर्रार बन जाऊंगा?
5: हाँ बेटा, खूब मालिश और कसरत करना, फिर देखना तुम्हारा शरीर कितना गठीला बन जाएगा।
1: बालक विवेकानंद को शरीर मजबूत बनाने का पहला पाठ शायद यहीं से मिला था। वो कोचवान से भी सवाल पूछता।
2: कोचवान जी, तुम हर दिन ये किस भगवान की पूजा करते हो?
6: बेटा, ये भगवान राम जी और सीता मैया हैं बेटा। और ये हैं हनुमान जी।
2: तुम इनकी पूजा क्यों करते हो? हमारे घर के पूजा घर में तो ये मूर्तियाँ नहीं हैं।
6: अरे तो क्या हुआ बेटा, मालकिन शिव शंकर की भक्त हैं, इसीलिए शिव पूजा करती हैं। पर वे रोजाना रामायण का पाठ तो करती हैं, यही उनकी पूजा है।
0: दत्त भवन में प्रायः प्रतिदिन दोपहर को रामायण तथा महाभारत की कथा होती थी। भुवनेश्वरी देवी स्वयं या कोई और महिला पाठ करती।

0: घर का काम खत्म कर दूसरी स्त्रियां पाठिका को घेर कर बैठ जाती। इसी छोटी सी महिला सभा में बालक नरेंद्र शांत होकर माँ की गोद में बैठा रहता। अक्सर भुवनेश्वरी देवी बेटे को गोद में बैठाकर सीताराम की कहानी, महाभारत की कथा या अन्य पौराणिक कहानियां सुनाया करती।
1: इसमें संदेह नहीं कि पुराणों की कहानियों का बालक के मन पर गंभीर प्रभाव पड़ा था। सुदूर अतीत युग के धर्मवीरों की पवित्र जीवनियां सुनकर उसके शिशु हृदय में ना मालूम भावों की क्या क्या लहरें उठा करती, जिससे वह अपनी स्वाभाविक चंचलता छोड़ घंटों मंत्र मुग्ध जैसा बैठा रहता था। रामायण सुनते सुनते नरेंद्र का सरल शिशु हृदय भक्ति रस से परिपूर्ण हो उठता।
0: एक बार उनके घर के पास ही मेला लगा था। बालक नरेंद्र अपने घर के पुराने नौकर रामू और दोस्तों के साथ मेला देखने गया था।
2: झूला झूला ताने में झूला झूला ये प्यारी प्यारी सी रसभरी जली भी ले लो, ये रसभरी जली भी ले लो, रसभरी जली भी ले लो।
3: अरे अरे मुन्ना, जरा इधर तो आ, झूला बाद में झूल लेना।
4: अरे तू इधर आ जा।
3: नहीं, मुझे उस ऊंची चक्री पर नहीं घूमना, तू पहले इधर आ। ये देख कितनी सुंदर मूर्तियाँ बिक रही हैं। ये शिव की मूर्ति? नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, घर में है तो। ये किसकी है? लक्ष्मी नारायण की? नहीं, ये भी नहीं, मुझे वह दिखाओ। ये कौन है?
5: राम जी और सीता मैया हैं।
3: दिखाओ दिखाओ। हाँ, मुझे यही मूर्ति चाहिए। रामू काका, इसे पैसे दे दो ना, मुझे यही मूर्ति खरीदनी है।
6: क्या करोगे बेटा इस मूर्ति का? चलो जलेबी खरीद देते हैं तुम लोगों को।
3: जलेबी वलेबी मुझे नहीं खाना, तुम खाओ, मुझे तो बस यही मूर्ति चाहिए।
6: ठीक है, अच्छा बाबा अब जिद कर रहे हो तो ले लो। लो भैया ये पैसे ले लो। अच्छा कितने का है? हाँ, 2 पैसा? अरे नहीं, ये तो 1-1 पैसे में बिकता है।
3: रामू काका मांग रहा है तो दे दो ना 2 पैसे, गरीब है बेचारा।
6: हाँ, गरीब है बेचारा, अरे बहू जी नाराज होंगी।
3: नहीं नहीं, मैं माँ को समझा दूंगा, तुम तो ले लो।
6: अच्छा ले लो भैया 2 पैसे। हाँ नहीं तो लूट मार मचा रखा है, अब बच्चा जिद कर रहा है तो लेना ही पड़ेगा ना। हाँ चलो ठीक से कागज में लपेट कर बांध दो।
7: हाँ बांधता हूँ, रुक जाओ।
6: अरे मिट्टी का है ना, टूट ना जाए। चलो दे दो, चलो बेटा ले लो, चलो चलो चलो चलो।
1: मूर्ति लाकर नरेंद्र ने मकान के छत पर एक सुनसान कमरे में उसकी स्थापना कर दी। रोज उस मूर्ति के सामने ध्यान मग्न होकर बैठा रहता बालक नरेंद्र। सीताराम के प्रति बालक का यह प्रेम उनके पश्चिम देशीय कोचवान मित्र को बहुत आनंददायक लगा। सीताराम के बारे में बालक के हजारों प्रश्नों का जवाब वह प्रसन्नता पूर्वक देता था।
3: अच्छा, राम जी को राक्षसों से डर नहीं लगता था?
8: नहीं बेटा, वे तो बहुत वीर और साहसी थे। मुनि वशिष्ठ के आश्रम में उत्पात मचाने वाले सारे राक्षसों को राम जी ने मार भगाया था, और उस समय वे तुमसे थोड़े ही बड़े रहे होंगे।
3: अच्छा, अगर मैं धनुष विद्या सीख लूं तो क्या मैं भी राक्षसों को मार सकूंगा?
8: हाँ हाँ मेरा राजा बेटा, बड़ा होकर न जाने कितने राक्षसों से लड़ेगा, उन्हें मार भगाएगा।
3: पर राम जी जंगल में क्यों चले गए? मना क्यों नहीं किया? उन्हें डर नहीं लगा क्या?
8: बेटा, राम जी माता कैकेयी को बहुत प्यार करते थे, और पिता दशरथ को तो वे देवता समान पूजते थे। इन दोनों का कहा भला वे कैसे न मानते? माता पिता की भक्ति करना तो कोई राम जी से सीखे।
3: अच्छा, जंगल में वो लोग खाते क्या थे? उनके साथ क्या कोई रसोईया भी गया था?
8: नहीं बेटा, वे तो खाली हाथ ही चले गए थे। जंगल में फल फूल खाकर ही गुजारा करते थे।
3: अच्छा, राम जी इतना अच्छा धनुष चलाते थे तो वे सोने के हिरण को पकड़ क्यों नहीं पाए?
8: बेटा, अब वो कोई असली हिरण थोड़ा ही था, वह तो माया थी माया। और राम जी को रावण का वध करना होगा, लोगों को उसके अत्याचार से बचाना होगा। यह सब तो पहले से ही तय था, तभी तो यह माया हिरण का दिखना, सीता हरण और राम रावण का युद्ध हुआ।
3: अगर राम जी सीता को साथ ना ले जाते तब तो यह सब झंझट ही नहीं होता।
0: कोचवान किसी कारणवश शादी विवाह के खिलाफ था, उसने नरेन को समझाया।
8: अब क्या बताएं बेटवा, ये औरतें ही तो सारी मुसीबत की जड़ है। न जाती सीता मैया तो राम जी को इतना परेशान न होना पड़ता।
1: कोचवान ने विवाहित जीवन की अशांति का ऐसा जीता जागता वर्णन किया कि बालक नरेंद्रनाथ के सुकुमार चित्त पर उसकी छाप गंभीर रूप से अंकित हो गई। उसके मन में अनेक चिंताएं उठने लगी और बेचैन होकर आंखों में आंसू भरे वे माँ के पास आए। आंसू देखकर माँ ने पूछा,
9: क्या हुआ बिले, किसी ने कुछ कहा क्या?
3: माँ, मैं कभी शादी नहीं करूंगा।
9: क्यों, अचानक ऐसी बातें क्यों, क्या हुआ?
3: मुझे मालूम है शादी होने के बाद आदमी को अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है।
0: नरेन ने माँ को कोचवान से सुनी हुई सारी बातें कह दी।
9: ठीक है बाबा, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अभी कौन तेरी शादी करवा रहा है, जब बड़ा होगा तो देखी जाएगी। जा, अब जाकर खेल, ये कोचवान भी।
3: मेरी शादी की बात कौन कर रहा है, मैं तो दूसरी बात से परेशान हूँ।
9: अब कौन सी बात लेकर परेशान है?
3: मैं राम सीता की पूजा कैसे करूँ, सीता तो राम की पत्नी थी ना।
9: अरे बिले, तू तो मुझे पागल ही कर देगा। तू और तेरे सवालों का जवाब देते देते तो मैं आ इधर आना मेरे पास, आ जा, आंसू पोंछ ले, आ ला, मैं पोंछ देती हूँ। ले बेटा, आजा मेरा बच्चा। राम सीता की पूजा न भी करो तो क्या है, कोई बात नहीं मेरा बच्चा।
0: नरेन कमरे से निकल आया, उसका मन अब तक शांत नहीं हुआ था। वो छत के कमरे से अपनी प्रिय राम सीता की मूर्ति को हाथों में उठा लाया और छत पर आकर खड़ा हो गया। संध्या हो चली थी, नरेन हाथों में मूर्ति लिए कुछ सोच रहा था। अंततः वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचा और कहा,
3: माफ करना राम जी, माफ करना सीता मैया, मैं आप दोनों का भक्त हूँ, श्रद्धा भी रखता हूँ, पर विवाहित जीवन वो मेरा आदर्श नहीं है, मैं आप दोनों की पूजा नहीं कर सकता।
0: कहते कहते वो व्याकुल हो उठा और मूर्ति को माथे से लगाकर नीचे फेंक दी।
1: दत्त भवन में अरसे से माने जाने वाले देशाचार और लोकाचार के छोटे छोटे नियमों को नरेन बचपन से ही नहीं मानता था। माँ के डांटने पर वो तुरंत उन नियमों का कारण पूछ बैठता।
9: ए, ए बिले, अरे अरे अरे, ये क्या कर रहा है? भात खाते खाते बदन पर हाथ लगा रहा था।
3: क्यों, क्यों नहीं लगा सकता, इस थाली में क्या बुराई है?
9: अरे वो भात की थाली है, झूठा है ना?
3: झूठा? भात थाली में डालने से थाली झूठी हो जाती है?
9: हाँ।
3: तो भात पेट में जाकर शरीर को भी झूठा कर देता है, फिर तुम मेरे झूठे शरीर को गोद में लेकर प्यार कैसे करते हो?
9: बिले, बकवास मत कर, जो कहती हूँ सुना कर।
3: अच्छा माँ, तुम भी तो भात खाती हो, फिर उस झूठे शरीर से शिव जी की पूजा कैसे करती हो?
9: सुन लो इसकी बातें, चल खा लिया ना, चल चल उठ उठ, चल पानी पी ले। अरे अरे अरे अरे अरे अरे, बाएं से नहीं, दाहिने हाथ से गिलास पकड़।
3: क्यों, अब बाएं हाथ में क्या हुआ? खाना तो दाहिने हाथ से खाया ना, और फिर बाएं दाएं में क्या फर्क है?
9: बहुत फर्क है, कोई भी अच्छा काम बाएं से नहीं किया जाता, समझे? हमेशा दाहिने हाथ से ही पानी पिया जाता है।
3: नहीं, मैं तो बाएं से ही पीऊंगा, देखता हूँ क्या होता है। क्या तुम्हारे शिव जी नाराज हो जाएंगे?
9: ओह, अब तेरे साथ कौन मुंह लड़ाए, चल उठ जा, उठकर दोनों हाथों को अच्छी तरह धो ले, चल चल चल चल चल, आ जा।
0: बालक नरेंद्र का मन एक ही तरह के खेल कूद में नहीं लगता था, वो हमेशा वैचित्र में नए नए खेलों की इजाद करते रहते थे। उनके साथी भी प्रबल उत्साह के साथ अपने नेता के साथ नए खेलों में जुट जाते। एक बार नरेंद्र का मन पुराने खेल से ऊब गया। उन्होंने झिल्ली कागज का एक रंगीन लालटेन बनाया और उसके अंदर मोमबत्ती जलाकर दीवार पर तरह तरह की आकृतियां बनाकर दोस्तों का मनोरंजन करने लगे। शाम को जब घरों में लालटेन जलाया जाता तो वे भाई बहनों को दीवार पर हाथों की परछाई से कई तरह के जानवरों और चिड़ियों की आकृतियां बनाकर दिखाते थे।
1: इसी समय उनके मन में पाक विद्या सीखने का विचार आया। उन्होंने अपने साथियों से कहा कि जिससे जितना बन सके रसोई का सामान इकट्ठा कर लाए। सभी एक दो आलू बैंगन आदि घर से ले आए। ज्यादातर सामान चूल्हा कड़ाही बर्तन और तेल मसाला नरेंद्र अपनी रसोई से मांग लाए। दोस्तों ने मिलकर बड़े उत्साह से खाना पकाया और उस अधपके भोजन को बड़े चाव से खाया। कहना ना होगा कि नरेंद्र ही प्रधान रसोईया बने और दूसरे बच्चों ने उनकी सहायता की।
0: यद्यपि बालक नरेंद्र नाथ शरारत करने में सबसे आगे थे, पर उनमें अशुभ या अन्याय की कोई मनसा नहीं होती थी। उनका सहज सरल स्वभाव सांसारिक कुटिलताओं से दूर रहता था। सत्यवादिता उनके जीवन का सार था। भले ही वे दिन भर विभिन्न खेलों और हास्य विनोद में मग्न रहते, पर रात को उन्होंने ध्यान करना शुरू कर दिया था। शीघ्र ही उन्हें कुछ अद्भुत दर्शन प्राप्त होते, जिक्र उन्होंने बड़े होने पर किया था। जैसे जैसे नरेंद्र की उम्र बढ़ी, उनकी मानसिकता में एक सुस्पष्ट परिवर्तन देखा गया। वे अब बौद्धिक कार्यों को प्राथमिकता देने लगे। उन्होंने पुस्तकों का अध्ययन प्रारंभ किया, नियमित रूप से अखबार पढ़ने लगे और किसी के साथ भी सार्वजनिक भाषण सुनने जाते, और जो कुछ सुनाते उसका सार अपनी मौलिक आलोचना के साथ अपने दोस्तों को सुनाते। वे लोग कुछ समझते कुछ नहीं समझते, पर नरेंद्र की बातें वे चमत्कृत होकर सुनते। इस तरह उन्होंने एक ऐसी तर्क शक्ति का विकास किया जिसका सामना कोई नहीं कर सकता था।
1: बचपन में एक बार नरेंद्र के साथ उनके एक सहपाठी की मारपीट हो गई थी। नरेंद्र टिफिन में मिठाई लाए थे। उनके सहपाठी ने, जो उनसे उम्र और ताकत में बड़ा था, नरेंद्र के हाथ से मिठाई छीन ली। मारा मारी शुरू हो गई। नरेंद्र मिठाई वापस नहीं ले पाए और भयंकर नाराज हो गए। मास्टर साहब को शिकायत करने पर उन्होंने समझाया,
5: छी छी छी छी छी छी नरेंद्र, तुम इतने बड़े घर के बेटे हो, तुम्हें एक मिठाई के लिए मारा मारी करना शोभा नहीं देता। फिर वह लड़का किस घर का है, उसकी छीनी हुई मिठाई क्या तुम दोबारा खा सकते थे?
3: क्यों क्यों नहीं खा सकते थे? वह मुझसे ज्यादा बड़ा है, इसलिए मैं जीत नहीं पाया, नहीं तो क्या मैं उसे वह मिठाई खाने देता?
5: नरेंद्र, कहा ना, उसका छुआ तुम नहीं खा सकते।
3: क्यों, क्या है, क्या है उसके हाथों में? उसके साथ एक ही क्लास में पढ़ सकता हूँ, खेल सकता हूँ, तो उसका छुआ खा क्यों नहीं सकता?
0: नरेंद्रनाथ ने अपने संपूर्ण जीवन में ये सब आचार व्यवहार छुआछूत कभी नहीं माना। बड़े होने पर एक बार इस दाएं बाएं झूठा और छुआछूत के प्रसंग में भयंकर नाराज होकर कहा था,
10: आप लोगों का पूरा ध्यान इन्हीं तुच्छ विषयों में ही लगा है कि हम पानी किस हाथ से पिए, किस किस को हम छू सकते हैं और इन नियमों के भंग होने पर कौन कौन से प्रायश्चित होने चाहिए। पहले तो हम भगवान का निवास ऊपर स्वर्ग में या नीचे मानव हृदय में समझते थे, पर अब जान पड़ता है कि वे रसोई घर व रसोई के बर्तनों में निवास करने लगे हैं। हमारा सर्वोच्च लक्ष्य है उदार बनना और कूप मंडूकता को त्याग कर बाहर आना, आत्मसात करना और खुद को सार्वभौमिक बना देना। पर हम तो अपने को नित्य लघुतर बनाते जा रहे हैं और शास्त्रों के आदेश के विपरीत अपने को सबसे अलग करते जा रहे हैं। हम अपने देशवासियों से ही नहीं जुड़ पा रहे हैं, अलग अलग टुकड़ों में बंटकर आप क्या हासिल करना चाहते हैं? मुक्ति? मुक्ति अलगाव में नहीं जुड़ाव में है। अपनी मुक्ति चाहते हो तो इन संकीर्णताओं से ऊपर उठो, तभी तुम्हारी मुक्ति होगी, देश की समाज की मुक्ति होगी, देश की समाज की मुक्ति होगी।

0: विनोबा की माँ। विनिया की स्मृति में बसी माँ विनिया की माँ रखुमाई देखने में सुंदर थी। गोरा वर्ण, बड़ी बड़ी आंखें, सुघर शरीर, खास पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी उनकी बुद्धि तीक्ष्ण थी। वे चतुर थी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे उनमें भक्ति और वैराग्य की भावना भी उत्तरोत्तर बढ़ती गई। गहने तो बहुत पहनती ही नहीं थी, कपड़ों में भी आवश्यकता से अधिक नहीं रखती थी। रोज बड़े तड़के उठकर चक्की पीसती और संतों के पद अभंग गुनगुनाया करती। भक्ति के भजन गाने में वे इतनी तन्मय हो जाती थी कि कभी कभी तो दाल सब्जी में नमक डालना ही भूल जाती या दोबारा डाल देती। ईश्वर पर अडिग श्रद्धा, कर्तव्य परायणता, प्रभु भक्ति के साथ साथ संसार के प्रति जल कमलवत अनासक्ति, ये उनके मुख्य गुण थे। विनोबा का जीवन बनाने में माँ की बड़ी महत्वपूर्ण देन है। विनोबा की आंखों में से आज भी माँ की याद आते ही आंसुओं की धारा बहने लगती है। वे आंसू नहीं है, वे है माँ के चरणों में उसके अनंत उपकारों का अभिवादन। माँ के बारे में विनोबा जी कहते हैं,
1: मुझ पर जो संस्कार हैं वो माँ के हैं, जिसके लिए दूसरी उपमा नहीं है। मुझे अनुभव से भरे बहुत से ग्रंथ पढ़ने को मिले हैं और सत्संगति भी प्राप्त हुई है। उन सबको तराजू के एक पल्ले में रखकर दूसरे पल्ले में मुझे जो ये साक्षात भक्ति की शिक्षा मिली उस दर्शन को रखकर तौलता हूँ तो दर्शन का वजन बाकी सब चीज़ों से बढ़ जाता है। मैं माँ का बेटा हूँ। होते हैं कुछ बच्चे माँ के, कुछ पिता के, कुछ दादा के, वैसे ही मैं माँ का। यही मेरी सही पहचान है। अर्थात मेरे जीवन पर माँ का जितना परिणाम हुआ है उतना किसी और का नहीं। उसने लगाई हुई आदतें, उसने दिखाई हुई दिशा, उसने बताई हुई बातें, इन सब का इतना उपयोग होता है उतना किसी भी बात का नहीं होता। स्त्रियों की तरफ देखने का दृष्टिकोण भी वैसा ही बना। मैं हमेशा स्त्रियों को मात्र दृष्टि से ही देखता आया हूँ। गीता का अनुवाद मैंने किया और उसे गीताई नाम दिया। संसार में कहीं भी आश्रय अगर ना भी मिले परंतु माँ के आंचल में आश्रय सदैव ही मिलता है। माँ परम भक्त थी। घर के सभी लोगों को खिला पिलाकर, घर के सब कामों को निपटाकर, स्वयं कुछ ना खाते हुए भगवान के सामने बैठकर उनकी विधिवत पूजा करती थी और पूजा समाप्त होने पर जब वो भगवान को प्रणाम करती थी तब उसके भक्त हृदय के दर्शन होते थे। प्रणाम करने के बाद अपने दोनों कान पकड़कर कहती थी,
2: हे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, मेरे अपराध क्षमा कर।

0: ऐसा कहते कहते आंखों से आंसू की धाराएं बहने लगी। इस पर विनोबा कहते हैं,
1: मानो उसका ईश्वर से सीधा संबंध हो। रामनवमी या कृष्ण जन्माष्टमी जैसे विशेष दिन हमारे भी आंखों से आंसू आते थे। वो विशेष दिन होता है, वातावरण श्रद्धा भाव वाला हो जाता है, मूर्ति सामने होती है,

उसे देखकर अश्रुधारा का बहना स्वाभाविक है, किंतु हर दिन की पूजा में इस प्रकार अश्रुओं का बहना मैंने देखा है और ये भक्ति के अलावा संभव ही नहीं हो सकता। मां रात को सबके बाद सोती और तड़के भोर के समय सबसे पहले जागती थी। बड़े तड़के चक्की पर आटा पीसते हुए मधुर भजनों को गाती थी। हम बच्चों को उसके कारण कितना ज्ञान मिला वो याद कर आंखें आज भर जाती हैं। कर्मयोग, भक्ति योग, ध्यान योग, ये तीनों इस तड़के की पिसाई में एक रूप हो जाते थे। माँ के वे भोर के आटा पिसाई के वक्त गाए भजन आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं।

0: विनोबा जी की मां सर्व सामान्य संस्कार कार्य में लीन थी। दिन भर काम करती, उनका सारा ध्यान ईश्वर भाव से भरा रहता था। वो सांसारिक थी, परंतु उसके हृदय में, उसके वाणी में कभी सांसारिक बातें नहीं थी। उनके मुख से भी कटु शब्द सुना नहीं। सवेरे उठने के साथ ही उनका ईश्वर नाम स्मरण शुरू होता था। आटा पीसने बैठती तो ईश्वर का भजन गाती। जो भजन गाती वे सब ईश्वर के होते और वे उतने ही प्रेम और तन्मय भक्ति से गाती थी। उनकी आवाज बहुत ही मीठी और मधुर थी। उसकी विशेषता ये थी कि वे बहुत तन्मयता से गाती थी। विनोबा जी ने एक दिन माँ से कहा,
1: माँ रोज नया भजन गाओ, कल का आज नहीं, आज का कल नहीं। ये कार्यक्रम तकरीबन 6 महीने चला और माँ ने रोज नया भजन सुनाया। इतने भजन उसे मौखिक याद थे। वो कर्नाटक की थी, उनका मायका कर्नाटक का था, इसकी वजह से उन्हें कन्नड़ कर्नाटकी भजन भी आते थे। पुरंदर दास का भजन वो बहुत ही मधुर स्वर में गाती थी, जिसका अर्थ था, मुझे भी कसम है भगवान, तुझे भी कसम है और हम दोनों भक्तों की कसम है, तुम्हें छोड़कर किसी दूसरे की शरण में जाऊं तो मुझे कसम, और अगर तुमने मेरा हाथ छोड़ा तो तुम्हें कसम। उनका दूसरा मराठी भजन भी मुझे खूब याद है।
0: विनोबा जी की माँ स्नान, रसोई इत्यादि काम जब करती थी तो वो भजन गुनगुनाते हुए कामों में तल्लीन हो जाया करती थी। परिणाम ये कि वो या तो रसोई में नमक डालना भूल जाती या कभी कभी रसोई में 2 बार नमक डाल देती। वे सबको खिलाकर अंत में भगवान की पूजा करके भोजन करती थी और विनोबा जी सबसे पहले भोजन किया करते थे, परंतु भोजन की तरफ ध्यान ही नहीं रहता था। जो थाली में परोसा, जो सामने आया उसे खाते थे और निकल जाते थे। उन्हें नमक का कम या अधिक होना पता ही नहीं चलता था। जब पिताजी भोजन को बैठते तो तुरंत कहते,
2: अरे कितना ज्यादा नमक डाल दिया है।
3: ठीक ही होगा, विनय तो भोजन करके गया, कुछ बोला नहीं।
2: अरे तेरे विनय को कुछ विज्ञान मालूम ही नहीं।
1: माँ शाम को जब मुझसे पूछती सब्जी में नमक ज्यादा था, तूने मुझे बताया क्यों नहीं, तो मैं सीधा बोल देता, आप ही क्यों नहीं चख लेती पहले, थोड़ा सा चखना चाहिए ना।
0: परंतु भगवान की पूजा करने से पहले खाना उन्हें पसंद नहीं था। माँ पिता का बहुत आदर करती थी, परंतु विनोबा जी को वो विशेष मानती थी। एक बार माँ ने चावल के 1 लाख दाने ईश्वर को समर्पित करने का संकल्प किया। रोज चावल गिनने का कार्यक्रम चला। भगवान के चरणों में अक्षत चावल ही चढ़ा सकते हैं, इसीलिए खंडित चावल को अलग करते जाना ये उनका नित्य क्रम बन गया। पिता थे वैज्ञानिक, माँ को रोज ये चावल गिनने का कार्यक्रम करते देखते रहे। एक दिन उन्होंने कहा,
2: अरे यह तुम क्या एक एक दाना गिनती हो, 1 तोला चावल तोलकर उसमें कितने चावल है यह गिन लो और फिर हिसाब करके 1 लाख चावल कर लो तो बस है। उसमें 1/2 तोला चावल अधिक डाल देना ताकि कम पड़ने का डर ही न रहे, थोड़ा ज्यादा रहे तो ठीक ही है।
0: माँ पिताजी को जवाब नहीं दे पाई, परंतु उनकी बात से वो सहमत नहीं हो सकी। विनु जब बाहर से लौटा तब माँ ने उससे पूछा,
3: विनया यह 1 लाख चावल गिन गिन कर अर्पण करने के पीछे क्या रहस्य है, यह तो बता।
4: मैं कहता था,
1: तुम जो एक एक दाना गिनकर ईश्वर को चढ़ाती हो वो गणित का काम नहीं, वो तो भक्ति है। दाने गिनते समय ईश्वर चरणों में जो तद्रूपता सधती है, भगवान का जो स्मरण होता है, उसी का तो महत्व है। तराजू में तौल लेने से ये चीज थोड़े ही सधने वाली है।
0: माँ का समाधान हो गया। उस रात पिताजी को भी निरुत्तर कर देने वाला जवाब मिल गया। अपनी ओर से 100% पुरुषार्थ और भक्ति की अखंड धारा बहाते हुए भी आखिरी विश्वास माँ का ईश्वर की चाह पर था। माँ रोज रात को दूध में जोरन डालते समय परमेश्वर का नाम लेती। एक बार विनोबा ने पूछा,
1: माँ दही जमाने में भी भगवान लाने की क्या जरूरत है।
3: बेटा हमने अपनी ओर से भले पूरी तैयारी कर ली हो, फिर भी दही तो तभी जमेगा जब भगवान की कृपा होगी, इसलिए मैं भगवान का नाम लेती हूँ।
0: मनुष्य का यत्न और ईश्वर की कृपा। नागपंचमी का दिन आता, मां विनया को नाग देवता का चित्र बनाने के लिए कहती। विनु कुमकुम का नाग बना देता, परंतु वो उतना अच्छा न बन पाता। तो विनु कहता,
1: मां बाजार में सुंदर चित्र मिलता है।
3: सुंदर हो तो भी वह निकम्मा है, वह मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो अपने बेटे के हाथ से खींचा हुआ चित्र चाहिए।
0: उस माँ का विनोबा पर बहुत बड़ा उपकार है, जिसने उन्हें दूध पिलाया, अन्न खिलाया, रात रात भर जागकर बीमारी में शुश्रूषा की, किंतु मानव आचार धर्म की शिक्षा देकर सबसे बड़ा उपकार किया। इस संदर्भ में विनोबा जी बताते हैं,
1: माँ ने बचपन में मुझसे तुलसी को जल चढ़ाने का नियम करवा लिया था। एक बार जब मैं नहाकर खाना खाने बैठा तो माँ ने सवाल किया, तुलसी को जल चढ़ाया? मैंने कहा नहीं। तुरंत बोली, पहले जल चढ़ा कर आओ, फिर तुम्हें खाना देती हूँ।
0: गागोदे के घर के आंगन में कटहल का एक पेड़ था। हरे भरे पेड़ की पत्तियों में जब से फूल बैठने लगे थे, तभी से घर के बच्चे मीठे फल खाने के स्वप्न देखना शुरू करते थे। जब शाखाओं पर छोटे छोटे फल दिखने लग जाते, तब से ही सब फल पकने की राह देखते रहते। रोज माँ से पूछते कि क्या अब ये फल उतारने लायक हो गया है। यो कहते कहते वह दिन आ जाता जब फल उतारने लायक हो जाता। जब उसके फल तैयार हो जाते तो विनय सहित सब बच्चे अत्यंत उत्साहित होकर इकट्ठे हो जाते। कोई पेड़ पर चढ़ जाता, कोई हाथ फैलाकर खड़ा रहता, कोई घर में थाली और चाकू लाने दौड़ता। इस तरह बच्चों की दुनिया में हलचल मच जाती। बड़े उत्साह के साथ फल उतारा जाता। सब बच्चों को इर्द गिर्द बैठाकर फल काटा जाता था और फिर सब में बांटे जाने का क्षण आते ही सबके मुंह में पानी भर आता था। इतने में माँ अंदर से प्रकट हो जाती थी। वे कहती थी,
3: ठहरो बच्चों, यह फल इस तरह खाया नहीं जाता, क्योंकि इस ऋतु का यह पहला फल है, इसे बांटना होता है, बचे तो खा सकते हैं। देखो प्यारे बच्चों, तुम लोग देव बनना पसंद करोगे कि राक्षस?
4: कैसा बेतु का सवाल है अम्मा का, भला राक्षस बनना कौन पसंद करेगा? निसंशय हम देव बनेंगे।
5: हम देव बनेंगे।
3: तो तुम जानते हो देव कौन होते हैं और राक्षस कौन होते हैं?
5: जो स्वर्ग में रहते हैं वे देव, जो नर्क में रहते हैं वे राक्षस।
3: नहीं नहीं, देव और राक्षस यही इसी पृथ्वी पर होते हैं। मानव से ये दोनों बनते हैं। जो देता है वह देव बनता है और जो रखता है वह राक्षस बनता है। बोलो बच्चों, तुम क्या बनोगे, देव या राक्षस?
5: हम देव बनेंगे, देव बनेंगे, देव बनेंगे।
3: तब फिर यह फल सबको देकर खाओगे ना?
5: जरूर जरूर।
0: और फिर एक एक टुकड़ा लेकर बच्चे पड़ोस में बांटने निकल पड़ते। खुश होकर सब में बांटते हुए कहते, लीजिए ये हमारे कटहल के पहले फल का प्रसाद। और फिर सब लोगों में बांटकर जो कुछ थोड़े इन्हें गिने टुकड़े बच जाते, उसे भाई बहन आपस में बांट लेते थे। उन छोटे छोटे टुकड़ों को मुंह में चबाते हुए बच्चों की कोमल आंखों में देवत्व की नई झलक दिखाई पड़ती। बांट कर खाओ, माँ के इस सूत्र संस्कार ने पुत्र के जीवन में एक नई जान भर दी। अपने पड़ोस में कभी कोई स्त्री बीमार पड़ती तो माँ सेवा के लिए दौड़ जाती। कभी आवश्यकता हुई तो अपने घर का खाना पकाकर उसके घर जाकर खाना पका आती। ये देखकर छोटे से विनायक को अचरज लगता। वो माँ से पूछ बैठता था,
1: माँ तुम बड़ी स्वार्थी दिखती हो, अपने घर की रसोई पहले बनाती हो फिर पड़ोसी की, ऐसा क्यों, इतना स्वार्थ क्यों?
3: विनया तू तो बड़ा मूर्ख है रे, यदि उनकी रसोई पहले बना लूं तो उनको फिर ठंडा ही खाना पड़ेगा। पहले अपनी बनाकर फिर उनकी बनाऊं तो उनको गरम गरम खाना मिलेगा, यह स्वार्थ नहीं परमार्थ है।
0: बचपन में विनु को भूत का बहुत डर लगता था। माँ विनया को समझाती थी कि ये भूत वूत कोरी कल्पना है, परमेश्वर के भक्तों को भूत कभी नहीं सताता। राम नाम जपो, सब भूत प्रेत भाग जाएंगे। माँ ने इतना कहा तो विनया का डर भाग गया। माँ ने कहा था कि अगर भूत दिखे तो प्रभु का नाम लो और लालटेन लेकर देखो। माँ पर श्रद्धा थी तो वो डर भाग गया। एक दिन की कहानी विनोबा खुद सुनाते हुए कहते हैं,
1: एक बार रात को हम अपनी कोठरी में टहल रहे थे, एक बाजू दिया था तो दीवार पर अपनी ही बड़ी बड़ी छाया दिखती थी। मैं घबरा गया, इतना बड़ा आदमी खड़ा है, इतना लंबा आदमी कभी देखा नहीं। तुरंत दौड़कर माँ के पास चला गया। माँ ने समझाया, बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, वो तो तेरा गुलाम है, तू जैसी आज्ञा करेगा वैसा उसे करना होगा, तू बैठेगा तो वो बैठेगा, तू खड़ा होगा तो वो खड़ा होगा। मैंने सोचा कि देखूं सही है क्या, तब मैं बैठ गया, वो भी बैठ गया, मैं खड़ा रहा, वो भी खड़ा हो गया, मैं चलने लगा, वो भी चलने लगा, मैं लेट गया, वो भी लेट गया। फिर मेरे ध्यान में आया, ये तो अपना गुलाम है। इस तरह से मेरा भूत का डर माँ की श्रद्धा से गया और छाया का डर माँ ने बुद्धि से निकाला।
0: दरवाजे पर भिक्षा मांगने वाला विनोबा जी के दर से कभी खाली हाथ नहीं जाता था। एक दिन एक मोटा तगड़ा भिखारी भीख मांगने आया। विनोबा की माँ उसे भिक्षा देने लगी तो विनोबा जी ने माँ से कहा,
1: माँ ये तो मोटा तगड़ा आदमी दिखाई दे रहा है, अगर ऐसे लोगों को भीख देते रहे तो देश में आलस बढ़ जाएगा। अपात्र को दान दिया गया तो दान देने वाले का भी अकल्याण होता है।
3: विन्या, पात्र अपात्र की परीक्षा करने वाले हम कौन? दरवाजे पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर के स्वरूप मानकर अपनी हैसियत के अनुसार उसे देते रहना, इतना ही हमारा काम है। उसकी परीक्षा लेने वाली मैं कौन?
0: पिताजी का स्वभाव था कि वे किसी न किसी जरूरतमंद को अपने घर पर रखते थे। उन दिनों एक गरीब विद्यार्थी उनके घर पर रहता था। घर में कभी कुछ ठंडा खाना बच जाए तो माँ खुद खा लेती थी, या ज्यादा हो तो अपने विन्या को देती थी। उस विद्यार्थी को तो वो हमेशा ताजी रोटी परोसती थी, कभी बासी नहीं खिलाती थी। विन्या ये तमाशा रोज देखता था। एक दिन उन्होंने माँ से मजाक में पूछा,
1: माँ तू तो हमें कहती है कि सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए, परंतु तेरा भेदभाव अभी तक गया नहीं। देख उस लड़के को तू ठंडा खाना कभी नहीं परोसती और मुझे परोसती रहती है, इतना फर्क तो तू भी करती है ना?
3: बात सही है बेटा, अभी मुझसे तेरे में और दूसरे में भेद हो जाता है। यह मुझ में तेरी आसक्ति है, मेरे हृदय में तेरे लिए पक्षपात है। तू मुझे पुत्र स्वरूप दिखता है जबकि वह लड़का मुझे भगवत स्वरूप दिखे, परंतु आसक्ति के कारण तू मुझे पुत्र स्वरूप दिखता है। जिस दिन भी तू मुझे भगवत स्वरूप दिख पड़ेगा उस दिन यह भेदभाव खत्म हो जाएगा बेटा।
0: महान पुत्र की महान माता का भेदभाव भी कैसा भव्य है। पुत्र के प्रति पुत्र भावना, पर के प्रति भगवत भावना। इसका एक और उदाहरण देते हुए विनोबा जी कहते हैं,
1: एक बार मेरे हाथ में डंडा था और मैं उस डंडे से सामने वाले खंभे को मार रहा था। माँ ने मुझे रोका और बोली, किस लिए उसे मार रहे हो? खंभे में भी ईश्वर का वास होता है, उसे मारना नहीं चाहिए। मैंने अपना हाथ रोका, खंभे को बिना वजह तकलीफ नहीं देनी चाहिए, ये तो भावना है, ये यहाँ की हवा में समाई है। सभी वस्तुओं की ओर भगवत भावना से देखना, यह शिक्षा बचपन में माँ से मिली।

इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियां कई देशों के संघर्ष के दौर की, वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने। ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में, कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में, कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की।

नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे किसान को देखा है जो अपने खेत में चारों तरफ कटीली झाड़ियां और बबूल के कांटेदार बीज बोता है? दिन रात वह उसी बबूल की फसल को पानी देता है, उसकी रखवाली करता है, लेकिन जब फसल पकने का समय आता है तो वह टोकरी लेकर खेत में जाता है और रोने लगता है कि अरे रे, मेरे खेत में मीठे रसीले आम क्यों नहीं उगे, मुझे आम खाने को क्यों नहीं मिल रहा है। आप ही बताइए, ऐसे किसान की बात सुनकर कोई भी क्या कहेगा? यही ना कि जब तुमने बोया ही काटा था तो आम कहाँ से मिलेंगे। कुदरत का नियम बहुत सीधा और निष्पक्ष है, खेत वही लौटाता है जो बीज आप उसमें डालते हैं। लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में रोज यही बचकानी भूल करते हैं। हम कर्म तो कड़वे और कांटेदार करते हैं, पर उम्मीद मीठे फलों की रखते हैं। कबीर साहब आज हमें इसी नासमझी का आईना दिखा रहे हैं। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह अद्भुत सूत्र। करता था तो क्यों रहा, करता था तो क्यों रहा, अब करी क्यों पछताई, बोवे पेड़ बबूल का अंब कहाँ ते खाई।

टाइम। श्रोताओं, कबीर साहब मनुष्य की दोहरी मानसिकता पर सवाल उठाते हुए कहते हैं, करता था तो क्यों रहा, जब तू अपनी मनमानी कर रहा था, वासनाओं में अंधा होकर दूसरों का दिल दुखा रहा था, पाप और अन्याय के काम कर रहा था, तब तू क्यों रहा, यानी तब तू क्यों नहीं रुका, तब तेरे विवेक ने तुझे क्यों नहीं रोका, अब करी क्यों पछताए, और अब जब उन गलत कर्मों का कड़वा फल सामने आ गया है, जब जीवन में दुख और संताप के कांटे चुभ रहे हैं, तो अब सिर पकड़कर पछताने और विधाता को दोष देने से क्या फायदा। इस अकाट सत्य को अगली पंक्ति में कबीर एक अमर रूपक से स्पष्ट करते हैं, बोवे पेड़ बबूल का, जब तूने अपने जीवन के खेत में केवल बबूल यानी ईर्ष्या, नफरत, बेईमानी और कांटेदार कर्मों के ही पेड़ बोए हैं, अंब कहाँ थे खाए, तो फिर तू यह उम्मीद कैसे कर सकता है कि तुझे खाने के लिए मीठे और स्वादिष्ट अंब यानी आम के फल मिलेंगे। प्रकृति का तराजू कभी गलत तौल नहीं सकता। यह दोहा भारतीय दर्शन के कर्म सिद्धांत की सबसे सरल और प्रामाणिक व्याख्या है। गीता में भी इस निष्काम और सजग कर्म का संदेश दिया गया है। मनुष्य की विडंबना यह है कि वह कर्म करते समय तो खुद को सर्वशक्तिमान और स्वतंत्र समझता है, लेकिन फल भोगते समय वह लाचार बनकर भाग या ईश्वर को कोसने लगता है। कबीर समझा रहे हैं कि फल कोई बाहर से थोपी गई सजा या पुरस्कार नहीं है, फल तो केवल हमारे ही बोए हुए कर्म का बीज का वृक्ष है। यदि जीवन में सुख, शांति और आनंद के आम चाहिए, तो आज के वर्तमान क्षण में अपने कर्मों को शील, सत्य और करुणा के रूप में बोना होगा। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा ठहर कर अपने वर्तमान जीवन की परिस्थितियों को देखिए। आज हमारे जीवन में जो भी अशांति, कलह या दुख हैं, वे किसी और की देन नहीं हैं। वे हमारे ही किसी पुराने गलत फैसले का या कर्म का परिणाम है। फिर आज पछताने और दूसरों पर इल्जाम लगाने से क्या बदलेगा। आज कोशिश कीजिए अपने कर्मों के प्रति पूरी तरह होशमंद होने की। कांटेदार

कल आपकी जिंदगी बगिया, जिंदगी की बगिया मीठे फलों और परम आनंद की छाया से सहज ही महक उठेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ, सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम।

0: ओम शांति। अब एक निमित ब्रह्मा कुमारी इसमें आज फिर आप सबका स्वागत। जब हैप्पीनेस के इंडेक्स को हम देखते हैं तो आज भी हमें लगता है कि इंडेक्स जो है वो अभी भी ऊपर नीचे हो रहा है। हमारी मंजिल क्या है, क्या हम उसे स्टेबिलिटी पर ला सकते हैं, एक इस लेवल पर ला सकते हैं अपने हैप्पीनेस इंडेक्स को? कोशिश यही कर रहे हैं इस पूरी श्रृंखला में। सबसे बड़ी बात हमारे जो पहला प्रयास है वो ये कि कम से कम इसको देख तो पाएं कि दिन भर में हम जो है ऊपर नीचे अपने इमोशंस के साथ होते हैं, खासकर हैप्पीनेस के साथ होते हैं। मंजिल तक पहुंचते जाएंगे जैसे जैसे हम प्रयास करते जाएंगे। आज भी कुछ और बातें करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ है जो मुझे टेक ओवर कर जाता है और फिर मेरी अपनी हैप्पीनेस जो मैं खुद क्रिएट कर रहा हूँ वो नहीं क्रिएट कर पाता। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। सिचुएशन जब थी, हमारी ये आदत कैसे बनी कि सिचुएशन ने हमें टेक ओवर किया? आई होप आई एम राइट बिकॉज दिस इज व्हाट पीपल आर आल्सो अंडरस्टैंडिंग कि सिचुएशन आई, हम पहले डिटैच रहते हैं, उसके बाद हम जजमेंटल होना शुरू होते हैं लोगों के प्रति या अपने प्रति भी, और उसके बाद हमारी सारी इमोशंस जो हैं वो पूरी सिचुएशन टेक ओवर कर जाती है। व्हाट टू डू नाउ?
1: वन इज़ तो इसको वॉच करना ही शुरू करना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, और प्रैक्टिस करें कि जैसे एक ड्रामा देखते हैं या एक मूवी देखते हैं तो हम ऑडियंस में बैठते हैं ना, ऑडियंस से बैठकर वहां देखते हैं कि स्टेज पर क्या हो रहा है। इस तरह से जीवन की यात्रा में भी चलते हुए ऑडियंस भी बनते जाएं बीच बीच में, यू नो इट इज़ अ लिटल वी हैव टू प्रैक्टिस हाउ दैट। लेकिन होता क्या है कि हम स्टेज पर भी हैं, सो हम एक्टर भी हैं, लेकिन एक्टर के साथ साथ हमें क्या बनना
0: है? व्यूअर,
1: ऑडियंस भी बनना है। क्यों ऑडियंस बनना है? कि ऑडियंस बनने से हम डिटैच्ड होते हैं, यू नो आई एम एन ऑडियंस, ये सब ड्रामा चल रहा है, ऑल द एक्टर्स आर प्लेइंग द रोल, तो डिटैच होकर उनको देखें, जजमेंटल होकर नहीं। जैसे ही जजमेंटल हो गए तो हम उनके रोल के अंदर उनके साथ।
0: That's what I'm saying, as an audience also, I was becoming a part of the whole thing.
1: As a detached observer, साक्षी होकर हर एक के रोल को देखते जाएं। जैसे ही आप साक्षी होकर हर एक के रोल को देखेंगे, आपका माइंड कैसे होता जाएगा? It will become still. उसमें बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है। और साक्षी होकर दूसरों के रोल को देखते हुए फिर जब अपना रोल प्ले करेंगे तो वो रोल कैसे होगा? You know, then I will be a creative actor. कि मैं जो अपना रोल प्ले कर रही हूँ, क्योंकि मेरा माइंड स्टिल है, स्टेबल है, तो क्रिएटिव है। एक डिस्टर्ब्ड माइंड क्रिएटिव नहीं हो सकता। अभी जब हम ऑटोमेटिक मोड में चल रहे थे तब ये था, आपने जो कहा या जो किया वो मेरे ऊपर इफेक्ट आया, तो मेरी अपनी क्रिएटिविटी
0: कुछ भी नहीं,
1: उसमें कुछ भी नहीं थी। Did I have the power to say to myself कि irrespective of उन्होंने जो बोला है I can remain stable? No. I said, नहीं, ये तो natural है, उन्होंने बोला तो मुझे बुरा लगेगा। तो मतलब मेरे पास पावर नहीं थी कि मैं अपने रोल को कैसे प्ले करने वाली हूँ। मेरा रोल डिपेंडेंट था
0: उनके कहने,
1: आपके रोल पर, कि आप अपना रोल कैसे प्ले करेंगे, उस हिसाब से मेरा रोल तो अपने आप ही बनता ही जा रहा था। अब अगर अपने सारा दिन को देखें कि हम जो रोल प्ले कर रहे हैं, क्या हम क्रिएटिवली उस रोल को प्ले कर रहे हैं या हमारा रोल अपने आप ही बनता जाता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस एंड अकॉर्डिंग टू पीपल? तो वो क्यों? क्योंकि हम हर एक के रोल में इतना घुसे हुए हैं और उनके रोल पर इतने जजमेंटल हो रहे हैं कि उस टाइम पर हम अपने रोल को क्रिएट करना भूल जाते हैं।
0: जब हम फिल्म ही नहीं देख पा रहे, जब हम ड्रामा ही नहीं देख पा रहे, वो यू नो एक व्यूअर के रूप में, एक साक्षी भाव से, तो हम अपने जीवन में तो
1: आज सारा दिन अगर एक बार ट्राई करें, सिर्फ एक दिन, क्या हम ये ट्राई कर सकते हैं कि हम किसी के भी रोल को, क्या कहें, किसी को भी जज नहीं करते आज एक दिन? एक दिन नहीं करते,
0: अच्छा है, वो गंदा है, वो एक्टिंग कर रहा है,
1: कुछ भी नहीं, या उनको ऐसे करना चाहिए या ऐसे नहीं, एक दिन नहीं करते। हमें करना है या नहीं करना है, लेकिन ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेट्स जस्ट पुट दैट असाइड फॉर वन डे। अच्छा, इवन इफ वन डे इज टू मच फॉर यू, जस्ट पुट दैट असाइड फॉर वन आवर। आपको एक दिन ज्यादा भारी लग रहा था क्या?
0: क्योंकि हमें पता था कि पूरे दिन में हमने बहुत सारे लोग ऐसे आने हैं, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसे आनी है जो हम भूल जाएंगे।
1: तो एक घंटा, एक घंटा इज पॉसिबल ना, तो एक घंटा ये करके देखना कि यू नो जस्ट ट्राई टू क्रॉस दैट वन आवर विदाउट गोइंग हर एक के बारे में, हर एक के बारे में, हर एक सिचुएशन के बारे में. एंड जस्ट एट द एंड ऑफ दैट वन आवर जस्ट सी हाउ यू फील. आप कैसा फील करते हैं वो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हो रहा है वो ये कि हर एक के रोल के अंदर आई गेट सक्ड, यू नो, आई गेट सक्ड इनटू योर रोल. यू शुड बी लाइक दिस, यू शुड नॉट बी लाइक दिस, यू शुड स्पीक लाइक दिस, यू शुड बिहेव लाइक दिस. आई कुड बी सेइंग दिस बट इवन इफ आई एम नॉट सेइंग आई एम थिंकिंग लाइक दिस. यू नो, बहुत सारी जजमेंट्स हम बोल नहीं रहे.
0: एक्चुअली
1: सोच तो सारा
0: मेरे दिमाग में भी यही बात आ रही थी कि अभी एक घंटा जो हम देंगे उसमें अगर कोई सिचुएशन नहीं आई तब तक तो मैं ठीक ही रहूंगा, लेकिन उस एक घंटे में मैं सोचता भी तो बहुत कुछ.
1: बात सोचने की हो रही है. जजमेंटल इज नॉट अपने शब्दों में, जजमेंटल है यहाँ सोचने में. तो एक घंटा अगर ट्राई करे कि जो है जैसा है everyone is okay, एक घंटा I am not going to judge, तो उसमें आपको एक घंटे के एंड में पता चलेगा आपकी बहुत सारी एनर्जी जो ऐसे ही ऐसे suck, you know, everyone is, we would say that everyone is sucking my energy like this, so it's not everyone sucking, I am giving my energy
0: out
1: to everyone, yeah, I'm giving it out, and after giving it out I get, I feel empty. यहाँ खाली हो जाते हैं. और जब जजमेंटल हो रहे हैं तो क्वालिटी ऑफ थॉट्स पॉजिटिव भी नहीं है ज्यादा, इट्स मोर ऑफ हर एक की कमियां कमजोरियां बहुत ज्यादा हम देखते. तो ये मेरे ऊपर इम्पैक्ट डालेगी, एक एक की वीकनेस देखते देखते यहाँ हालत क्या हो जाएगी बाय द एंड ऑफ द डे. तो अगर हम जो ये साक्षी भाव टीवी के सामने नहीं कर पा रहे, इसको प्रैक्टिकल में करके देखते हैं कि एक घंटा लेट मी जस्ट बी डिटैच्ड, नो वन एंड नो सिचुएशन विल अफेक्ट मी फॉर वन आवर, तो हमें पता चलेगा कि डिटैच्ड होने से कितना अंदर पावर भरती है. फिर जो सेकेंड स्टेज हम वॉच कर सकते हैं, जब मैंने आपको देखना बंद कर दिया तो मैं अपने को देखना शुरू कर देती हूँ. मैं यहाँ आई इवैल्यूएट कि यहाँ क्या हो रहा है. आप जो लास्ट टाइम कह रहे थे ना कि अपने थॉट्स नहीं, हम आई कैन नॉट सी माय थॉट्स, व्हाई कैन नॉट आई सी माय थॉट्स,
0: सो मच आउट.
1: सी एट वन टाइम मेरा ध्यान एक ही पर जा सकता है, तो एक सेकेंड अगर वो एक सेकेंड मैं आपके बारे में सोच रही हूँ तो मैं अपनी तरफ ध्यान नहीं देती. तो जब बहुत ज्यादा और चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं तो ये अपनी तरफ ध्यान नहीं जाता. थोड़ी देर के लिए यहाँ देखना शुरू करें,
0: एक घंटा, जस्ट वन आवर हम अपने बारे में, किसी और के बारे में नहीं सोचेंगे, किसी सिचुएशन के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि सिचुएशन के बारे में भी तो सोच रहे होते हैं, लेकिन यहाँ से शिवानी
1: फिर सोचेंगे क्या हो जाएगा. एक घंटा सोचेंगे,
0: फिर हम ना सिचुएशन रहे ना लोग रहे ना, फिर अब क्या होगा.
1: इट्स नॉट सिचुएशन के बारे में या लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे, जजमेंटल नहीं होंगे
0: कि अगर ये सिचुएशन ऐसी हो जाती तो अच्छा होता,
1: ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा. सी, वो ये भी हमें पता नहीं है कि हम कितने जजमेंटल हैं, क्योंकि हमने कभी
0: ध्यान नहीं
1: देखा नहीं है. तो जब देखना शुरू करेंगे ना तब पता चलेगा, अच्छा अच्छा, आई क्रिएट दीज काइंड ऑफ थॉट्स अबाउट एवरीवन. राइट नाउ वी नॉट इवन अवेयर के व्हाट क्वालिटी ऑफ थॉट्स आई क्रिएट फॉर एवरीवन. सो वन डे इट्स नॉट दैट आई स्टॉप थिंकिंग. See, no one should do it unnaturally. Yes, yes. Oh, मैंने कुछ नहीं सोचना है, मैंने कुछ नहीं सोचना है. आप अपना नॉर्मल चलो, जैसे आप चल रहे हो. सिर्फ ध्यान दो कि मैं क्या सोच रहा हूँ, उसको देखने की कोशिश करो. और जैसे ही आपको वो थॉट मिले कि मैं ये सोच रहा हूँ, इनको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, आई जस्ट स्टॉप एंड आई टेल माई सेल्फ इट्स ओके. For one hour, I am not going to create.
0: Yeah, ऐसा सोचें कि वो प्लीज ऐसा करे, because we have to be very, very clear. कि हमें क्या नहीं सोचना है.
1: Absolutely. और हमें क्या सोचना है कि वो जो है जैसे है
0: अच्छे.
1: It's okay. Accept. Accept. Acceptance doesn't mean कि I agree with you.
0: वही मैं कहने वाली थी कि फिर हम तो देखिए इन्फॉर्मेशन तो चाहिए, और मुझे किसी सिचुएशन को या किसी व्यक्ति को टोटालिटी में देखना होगा ना, क्लैरिटी में. मुझे उनके नेगेटिव भी देखने होंगे, पॉजिटिव भी देखने होंगे. सो अगेन, क्या मैं अपने आप को उनका नेगेटिव, क्योंकि होता ये है कि जब मुझे उनके बारे में जजमेंटल नहीं होना तो मैं ये कहूंगा कि मैं उनका नेगेटिव देखूंगा ही नहीं.
1: यू नो, इट्स नॉट, दिस इज अ गुड पॉइंट, बट इट्स नॉट अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इट्स ओनली दैट वी आर डिफरेंट.
0: या बिकॉज देयर इज नथिंग लाइक नेगेटिव,
1: वी आर डिफरेंट. मुझे जो चीजें अच्छी लगती हैं वो मैं अपने लिए पॉजिटिव की कैटेगरी में डालूंगी, और जो मुझे नहीं अच्छी लगती आई पुट देम इन द नेगेटिव. लेट्स से फॉर एग्जांपल, मुझे टाइम पर आना अच्छा लगता है, तो जो भी लेट आए वो मेरे लिए क्या है,
0: गलत हो गया,
1: नेगेटिव है. लेकिन वो एक्चुअली जो लेट आ रहा है उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं है उस बात से, दे आर जस्ट कंफर्टेबल विद द वे दे आर.
0: फिर कुछ चीजें ऐसी हैं शिवानी जो कहा जाता है कि जो सही ही है, मर्यादाओं में रहते हुए, मतलब समाज में रहते हुए, ये टाइम पे आना, तो इट्स अ
1: सी मर्यादाएं भी कौन बना रहा है. इवन इफ यू जस्ट सी द कल्चर इन द ईस्ट एंड यू सी द कल्चर इन द वेस्ट, आपको एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिखाई देगा. जब हम अभी लंदन गए रिसेंटली, सो हमने व्हाट डिड वी सी, वी सॉ दैट जो ट्रैफिक वहां पर चलता है वो बहुत स्मूथ चलता है. हम लोग रोड पर ऐसे खड़े थे क्रॉस करने के लिए, वो गाड़ी रुक गई एंड आई वाज लाइक, आई जस्ट आस्क्ड द सिस्टर, आई सेड हमने कुछ गलत किया है क्या, वो गाड़ी क्यों रुक गई? तो शी सेड वो गाड़ी रुकी है ताकि आप क्रॉस कर जाओ. नाउ दिस इज एन एलियन कॉन्सेप्ट फॉर मी, इट डजंट हैपन हियर. सो एवरीवन हैज क्रिएटेड देयर ओन कल्चर, देयर ओन वे ऑफ लिविंग. तो हम कहेंगे वहां ऐसा नहीं होता. नाउ इट्स नॉट अबाउट वो राइट है या इंडिया में जो होता है वो, दे जस्ट बोथ राइट फॉर देम, बट हम तुरंत जजमेंटल हो जाएंगे.
0: देखा
1: ये राइट है, वो वाला रॉन्ग है या ये वाला राइट है. नो इट्स नॉट, इट्स जस्ट दैट इट्स डिफरेंट. जैसे हम राइट और रॉन्ग उसको लेबल कर देते हैं तो एनर्जी चेंज हो जाती है. सी इफ आई से यू आर डिफरेंट फ्रॉम मी, इट्स अ डिफरेंट एनर्जी. बट इफ आई से यू आर रॉन्ग, इट्स अ डिफरेंट एनर्जी, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग. So when I create this thought about anyone, कि ये different है, it may be कि मेरे से match नहीं करता आपका वो संस्कार, आपका वो स्वभाव, आपका वो व्यवहार, लेकिन when I create a thought ये different है, I may not like it, but if I say this is wrong, this is bad, then what energy I send out to you? This is negative energy. This is lack of respect. This is lack of love, and this will create a disturbance here. If I acceptance means I agree, aap different hai, main different hu, I accept the difference. I don't resist the difference. I accept. Jab hum resist karte hain difference ko, to hum dusre ko apni tarah banane ki koshish karte rehte hain, kyunki humne judgment ye pass ki hai ki main sahi hu, aap galat hai. Between a parent and a child, ye bahut critical hai.
0: Even husband wife,
1: Yeah. Yes. Parent and child, why I said, because parents बहुत ज़्यादा ये अथॉरिटी के साथ हर टाइम हम चलते कि हम सही हैं, बच्चे गलत हैं. सी अगेन, इंटेंशन बहुत अच्छी है. कई बार इंटेंशन बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसको अगर हमें किसी को कुछ सिखाना है, मतलब उनको एम्पावर करना है ना, लेकिन अगर हम ये एनर्जी भेजते हैं कि you're wrong, you're bad, this is wrong, तो हम उसको एम्पावर नहीं कर रहे, हम उसको एक्चुअली disempower
0: कर रहे हैं. अगर कोई ड्रग्स ले रहा है या स्मोक कर रहा है या ड्रिंक कर रहा है, हाउ डू वी टेक इट? दिस इज अगेन, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज फर्स्ट थॉट व्हिच विल कम इज दैट ही नीड्स टू चेंज, ही नीड्स टू स्टॉप.
1: ही नीड्स टू चेंज इज अ डिफरेंट एनर्जी, एंड ही इज बैड इज अ डिफरेंट एनर्जी.
0: Actually, I consciously tried to be not create the thought, but the first thing which comes to your mind is this is wrong.
1: Yeah, this. अब क्या होता कि जो भी बच्चा ऐसा कुछ ले रहा है, बच्चे क्यों, बड़े भी ऐसे ले रहे हैं कोई, तो घर में पूरा वायुमंडल ये बन जाता, आप गलत हैं, आप बुरे हैं, ये पाप है, ये दिस काइंड ऑफ
0: एनर्जी. हमारा क्या होगा, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? इट्स लाइक फॉरगेट अबाउट, वो तो खैर है ही गलत, हमारी जिंदगी में हमारे ही बच्चे ने ये करना था,
1: तो फिर वो मेरी पेरेंटिंग स्किल पर भी तो क्वेश्चन मार्क उठ जाता है ना. तो ये जब हम एनर्जी, पहली बात, जो भी कुछ ऐसा कोई स्टिम्युलेंट ले रहा है, उसके जीवन में कुछ थोड़ा सा तो वैक्यूम है, समवेयर सेल्फ एस्टीम थोड़ी सी लो है, एंड ये स्टिम्युलेंट्स मुझे उसको भरने में मदद करते हैं. लेकिन अब वो लो सेल्फ एस्टीम के साथ, वो कोई हर्ट के साथ, दर्द के साथ मैंने वो लेना शुरू किया, तो इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग मी एंड सपोर्टिंग मी एंड एम्पावरिंग मी हाउ टू कम आउट ऑफ माई पेन, सबसे मुझे क्या मिला? आप बुरे हो, आप गलत हो, आप ये
0: rejection
1: हो, रिजेक्शन मिला. मैंने एक्चुअली वो लेना ही इसलिए शुरू किया होता है क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे वो रिजेक्शन की एनर्जी या हर्ट की एनर्जी थी. अब एक्चुअली वो छोड़ने के लिए मुझे चाहिए होगा कि वो भरा जाए, वो जो मेरे अंदर का वैक्यूम है वो भरा जाए. लेकिन हमारी इंटेंशन बहुत राइट होती है, हम चाहते हैं कि वो बच जाए उन चीज़ों से, लेकिन हम उसके रूट को नहीं देखते हैं. हम ये देखते हैं कि ये ले रहा है, ये इसकी हेल्थ के लिए बहुत बुरा है, तो हम उसको रोज कहते हैं ये गलत है, ये छोड़ दो. हम ये नहीं समझते ये क्यों ले रहा है, और वो जो रीज़न जिसके कारण ये ले रहा है वो तो इससे भी ज़्यादा बुरा है. अगर मेरे अंदर कोई दर्द है, वो दर्द तो इस स्मोकिंग से या अल्कोहल से भी ज़्यादा बुरा है, ये स्मोकिंग और अल्कोहल मेरे शरीर के लिए हानिकारक है, ओके, लेकिन वो जो दर्द मैंने पकड़ के रखा है, रिजेंटमेंट, वो मेरे लिए कितना हानिकारक है. तो आई जस्ट नीड टू गो वन स्टेप बिहाइंड. जेन्युइन लव है ना, कंसर्न है, तो क्या करें, एक स्टेप पीछे जाएं. ये स्टिम्युलेंट्स छूट जाएंगे अपने आप, लेट इट बी राइट नाउ फॉर सम टाइम. एक स्टेप पीछे जाकर ये क्यों ले रहे हैं, वैक्यूम है. तो इंस्टेड ऑफ उनको ये एनर्जी भेजें कि आप गलत हो, इफ़ यू कैन सेंड देम दैट एनर्जी ऑफ लव, ऑफ रिस्पेक्ट. हम कहते हैं लेकिन प्यार तो हम बहुत करते हैं ना, प्यार में हम बार बार ये नहीं कह सकते आप बुरे हो, आप गलत हो, ये पाप है, ये दूसरे को डिसएम्पावर करता है. आप उस बात को साइड रखो कि वो क्या ले रहे हैं, आप इग्नोर कर दो, इवन इग्नोर कर दो आप उसको थोड़े दिन के लिए, आप सिर्फ उसके वो दर्द को भरो, जस्ट बाय गिविंग जेन्युइन रिस्पेक्ट, नॉट बाय सिर्फ ऊपर ऊपर से बोलकर, अंदर से वो भर जाएगा ना, वो स्टिम्युलेंट तो ऐसे छूट जाएगा. और अगर वो भरेगा नहीं, आप रोज लड़ते रहो उस बात के लिए कि इसको छोड़ दो, इसको
0: और
1: छोड़
0: उससे दो. भी पहले अपने आप को तो भरें, यू नो, क्योंकि हमने इतना दर्द क्रिएट किया है इस पूरे थॉट से कि मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ये कर रही है, या मेरा हस्बैंड ये कर रहा है. एंड सो वी जस्ट गो इनटू सो मच ऑफ अ डीप. यस,
1: सो वन नाउ अगेन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जजमेंट, अगर कोई मेरे आसपास ऐसा कुछ कर रहा है,
0: तो आई एम नॉट बैड,
1: नॉट टू बी जजमेंटल अबाउट इट. आप जजमेंटल नहीं होते ना जैसे, तो सामने वाले को आपसे बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है. और जैसे ही आप जजमेंटल होते हैं, भले आप बोलेंगे कुछ नहीं, आप ऊपर से बात अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो एनर्जी
0: उन्हें पता होता है, यू नो, सो मेनी टाइम्स दे से दैट आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग.
1: एग्जैक्टली, सो दैट एनर्जी रीचेस. तो एक दिन के लिए ये ट्राई करना कि औरों के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना, फिर अपने थॉट्स को देखना शुरू करना, अपनी फीलिंग्स को, धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि ये जो थॉट्स भी हो रहे हैं ना, ये क्रिएट किए जा रहे हैं. आई एम क्रिएटिंग दीज थॉट्स, आई एम द क्रिएटर ऑफ दिस थॉट्स, आई एम नॉट इवन द थॉट, आई एम नॉट दिस रोल, आई एम नॉट दिस, यू नो, द बॉडी, बट आई एम नॉट इवन द थॉट दैट ऑल्सो आई एम क्रिएटिंग, आई क्रिएट दैट थॉट. जैसे ही आप उस लेवल पर आते हैं कि आई क्रिएट दिस थॉट, आई क्रिएट दिस फीलिंग, आप थॉट से भी डिटैच हो सकते हैं. आप क्योंकि जैसे ही मुझे पता चला
0: ये थॉट मैंने क्रिएट कर दिया,
1: तो मतलब मैं कोई और हूँ ना. जैसे मैंने कहा ये मैंने क्रिएट किया, तो मैं कोई और हूँ. एंड ये स्थिति में जब आप पहुंचते, तो दिस इज स्टिलनेस, जो हम कई बार बोलते हैं कि आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस वॉट इज दैट स्टिलनेस, वॉट इज साइलेंस. तो साइलेंस है एक, तो यहाँ से साइलेंस, और एक है यहाँ साइलेंस. तो यहाँ साइलेंस मतलब ये नहीं कि हम सोचना बंद कर देंगे. कई बार भाई बहने मेडिटेशन मीन्स ट्राई करते हैं हम थॉट्स ही नहीं क्रिएट करें, नॉट रियली पॉसिबल. लेकिन सिर्फ साक्षी होकर देखें कि ये भी मैं क्रिएट कर रहा हूँ. जैसे ही वो देखेंगे ना, उसकी स्पीड भी स्लो डाउन हो जाएगी, क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, एंड यू विल एक्सपीरियंस दैट इनर स्टेबिलिटी, दैट साइलेंस, दैट पीस. ये एक्सपीरियंस करना है. क्या होता है, नॉर्मल में, नॉर्मल एक्टिविटी में वी आर क्रिएटिंग अबाउट 25 टू 30 थॉट्स पर मिनट. दिस इज मेडिकली बीन कैलकुलेटेड. ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ जो मशीन होती है, उस पर ये वेव्स आते हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन बिहाइंड दैट. 25 टू 30 थॉट्स
0: पर मिनट,
1: पर मिनट नॉर्मल स्टेट में. इसको हम कहते हैं बीटा स्टेज ऑफ द माइंड, के नॉर्मल स्टेट ऑफ द माइंड में. और अगर हम माइंड के वेरियस स्टेजेस को देखें सारा दिन, तो अप्रोक्सीमेटली इट विल कम टू सारा दिन में 40,000, 40,000 to 50,000 थॉट्स हम क्रिएट करते हैं. दिस इज माई प्रोडक्शन. ये जैसे एक कंपनी है और उसकी ये प्रोडक्शन है, 40,000 थॉट्स अ डे. क्वालिटी,
0: It's all waste, actually. maximum times, you know.
1: तो उसमें कई thoughts बहुत powerful, positive होते, कई negative होते हैं, गुस्सा, resentment, चिंता, कई necessary होते हैं कि ये करना है, आज ये जान, और बहुत सारे waste होते हैं. Waste मतलब बहुत ज़्यादा जो बीत गया, या बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचना जो अभी हुआ ही नहीं, तो उसमें कोई power नहीं है, क्योंकि it is not in my control, neither the past nor the future. तो इतनी सारी हमारी थॉट्स की स्पीड है. आर वी एवर अवेयर कि हम एक मिनट में 25 टू 30 थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं? तो इसलिए बहुत फास्ट है. तो जब हम मेडिटेशन में बैठते, तो ये धीरे धीरे स्लो होता. मेडिटेशन भी नहीं, अगर आप सिर्फ इसको वॉच करना शुरू कर दो, ये स्लो डाउन हो जाएगा. यू विल गेट टू सी द स्पीड. और तब अगर इसको हम थोड़ा सा भी स्लो करते, तो हमें लगता है ये तो हमने सोचना ही बंद कर दिया. तो सोचना बंद नहीं किया, लेकिन सोचने की स्पीड को बहुत स्लो कर दिया है. तो हैप्पीनेस मीन्स व्हेन माय थॉट्स डोंट गो like this, but they are absolutely stable. Ek contentment, ek inner peace. Hum bahut sare words use karte hain ki santushtata kya hai, satisfaction kya hai, peace kya hai. It's all this feeling where you are inside actually just comfortable. Jabhi bhi aise aise kuch bhi hota hai, wo comfortable nahi hota. Lekin aap bilkul stable hai, contented hai. This is happiness. Happiness is not excitement. Excitement is different. Humne ice cream khaya aaj. Kehte, I'm very happy after. That's not happiness. Wo to ek sensation hai. Ek sensation thi taste bud ke dwara mujhe mili. And that is, you know, giving me that sensation. I say this is happiness. Suppose, let's say ki mere daant mein bahut dard ho raha hai. Lekin aaj kuch hua, na wo theek ho gaya. Say, I'm very happy. You know, my, this is not happiness. Wo dard tha, I have got relieved from my pain. So it's a relief. Then I'm very excited about something that has happened. Lekin hum in sari cheezon ko naam kya de dete hain? Happiness. Aur is process mein happiness actually kya hai? Wo bhool jati.
0: To wo jo sari cheeze agar hame nahi mil rahi hain, to hum say, we say that we are not getting happy.
1: Yeah, that's why. And then we start looking for it outside. To happiness chahiye nahi actually. Kuch bhi nahi karna hai khush rehne ke liye. Khush hum already hain. See, it's a different thing. Ek hai ki yahan, you know, it's like a glass. I am going through life today with the focus ki ye jo mera glass hai na, ye khali hai, please isko bharo. Kuch na kuch aisa hota jaye jisse ye bharta jaye. Just change the focus one day ki ye glass already bhara hua hai. Ab sirf sara din kya karna?
0: Isko bahar nahi jaane dena.
1: Sambhal ke chalna hai ki har choti choti baat mein ye spill off nahi kar jaye, kyunki ye itna jaldi spill off karte jate hain sara din mein, fir at the end of the day we find ourselves very empty, very depleted.
0: But this becomes very boring.
1: Again, agar aapne excitement ko apni happiness ke saath relate kar diya.
0: To jab wo nahi hogi to aap.
1: Aur excitement bhi bahut healthy nahi hai actually mind ke liye. And jaise fear hai, to wo low state hai. Excitement uska other opposite hai. तो ये दोनों चीजें स्टेबिलिटी नहीं है और फिर हम दोनों के
0: एक्चुअली हम दोनों में वी से दैट इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट यू नो
1: इट गिव्स अ वेरी
0: पिट ऑफ माय स्टमक ऐसा कुछ फील होता है चाहे डर लग रहा है चाहे बहुत खुशी हो रही हो
1: एंड दोनों चीजों में आपको अपनी फिजियोलॉजी पर इम्पैक्ट दिखाई दे
0: शरीर पर
1: यहाँ नॉर्मल नहीं रहता है आपकी हार्ट एक्साइटमेंट में आपकी हार्ट बीट नॉर्मल है नहीं डर में भी आपकी हार्ट बीट नॉर्मल आपकी पल्स रेट एनीथिंग दैट्स नॉट नॉर्मल Now we know. This is what is abnormal. But we thought ye normal hai. See, man par to shayad hume abhi nahi pata chale ki kitna impact pad raha. Physiology par to dikhai de raha na. Turant you will find your heart beating so fast. How's that normal? The happiness is that stability. To ab kya hoga? Situation specific nahi hai. Ab chahe kuch bhi ho jaye sara din mere aaspas, mujhe sirf ye dhyan rakhna hai ki mujhe apni stability ko नहीं खोना है इट डजंट मीन मैं कुछ नहीं करूं मैं कुछ नहीं कहूं किसी को बच्चे ने कुछ गलत किया मैं कहूं या नहीं कहूं कहें लेकिन दो चॉइसेस हैं या तो गुस्सा होकर कहें डिस्टर्ब होकर कहें या फिर स्टेबल रहकर करें वो पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल वी थॉट रिएक्ट करना गुस्से से बोलना डिस्टर्ब होना दिस इज द ओनली वे टू डिसिप्लिन समबडी सुनो सो व्हाट वी कुड ट्राई वन डे इज Do everything. आपको काम करवाना है लोगों से आप काम करवाओ डिस्टर्ब हुए बना और इसको सिर्फ एक दिन का एक्सपेरिमेंट करना है वी ऑलवेज ट्राई दिस एज अ 24 आवर एक्सपेरिमेंट 24 घंटे इसको ट्राई करना है कि आज एक दिन चाहे कुछ भी हो जाए मेरे आसपास एंड कुछ भी देन मीन्स कुछ भी जस्ट वन डे आई विल नॉट गेट डिस्टर्ब्ड जस्ट वन डे आई विल डू एवरीथिंग जस्ट विद दिस रिमेम्बरेंस आज एक दिन स्टेबल और यू विल रियलाइज ये बहुत बहुत ईजी है इट्स सिर्फ किया नहीं था अभी तक ट्रैफिक में अटके ये क्या हो रहा है कैसे हो रहा है नहीं किसी ने रॉन्ग साइड से ओवरटेक कर लिया कैसे चलाते हैं पता नहीं इनको लाइसेंस कौन दे देता है ऐसे ही है ये तो ये है सारी सारा दिन सिर्फ एक दिन वो नहीं करना है सब कुछ करना है सिर्फ एक दिन डिस्टर्ब नहीं होना स्टेबल रहना एंड यू विल रियलाइज इसके लिए कोई विधि कोई तरीका सीखना नहीं है कहीं से इसको सिर्फ याद रखना है कि मुझे एक दिन स्टेबल रहना एंड यू सी हाउ मच एनर्जी यू विल सेव डेफिनेटली
0: सो ये जो स्टेबिलिटी है ये हमें कितनी स्ट्रेंथ देती है और कितना हमें एनर्जी देती है एक्चुअली कितना कुछ और करने के लिए करती है तो ये हम अपने साथ करेंगे ये एक्सपेरिमेंट हमारे लिए रहेगा और आपसे हर बार कहेंगे कि कुछ भी जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो कुछ भी आप समझ पा रहे हैं, उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं खुला निमंत्रण हर बार की तरह। तो या तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फोन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 01242667000, 9999344555, 9999344666, 9873666555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। जैसे शिवानी, जो जो आज हमने समझा है उसे हमने किया तो है, ट्राई किया है उसे समझें, लेकिन एक और बात समझ में आई हुई है कि साइलेंस में जैसे बैठते हैं वो डीप हमारे सबकॉन्शियस में जब बैठने लगता है उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ मिनट अगर हम रिफ्लेक्ट करें,
1: कंफर्टेबल होकर बैठे और अपने थॉट्स को consciously create करने का प्रयास करें। Let me look at myself, the creator, the master, the powerful being. I, the creator of every thought, has a choice. मेरे आसपास चाहे कुछ भी हो जाए, I choose stability. चाहे कोई कुछ भी कहे, I choose stability. और जैसे ही I remain stable, situation परिवर्तन हो जाती है। एक क्षण के लिए अपने आप को उस व्यक्ति के सामने देखें जो आज दिन तक हम समझते थे कि ये मुझे गुस्सा दिलाता, ये मुझे डिस्टर्ब करते। अपने आप को उनके सामने देखिए, वो वैसे ही है, वैसे ही बोल रहे हैं, वैसा ही व्यवहार, लेकिन अपने आप को देखें, आई एम स्टेबल। उनके बोल, उनके व्यवहार मेरे मन पर प्रभाव नहीं डाल सकते। आई चूज माई रिस्पॉन्स बिकॉज आई एम द पावरफुल बींग। ओम शांति,
0: ओम शांति। अगर इन रिफ्लेक्शंस को देखें तो कहीं ना कहीं वो शक्ति जो बाहर से तलाश रहे थे, इन सॉफ्ट इमोशंस, इन्हें हम सॉफ्ट इमोशंस कहते थे, चाहे वो हैप्पीनेस था, पीस था, लव था, वो मुझे कितना शक्तिशाली बनाता है। तो आज खुशी की और शांति की, स्टेबिलिटी की इस शक्ति को अपने अंदर महसूस करने का प्रयास करें। आज इतना ही, आगे मुलाकात होगी। ओम शांति।

0: विवेकानंद की पारिवारिक पृष्ठभूमि से आप परिचित हुए। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व अपने आप अलग थलग रूप से विकसित नहीं होता। व्यक्ति आज जो है वो उसकी वंश परंपरा और पारिवारिक तथा सामाजिक वातावरण का फल है। विवेकानंद को एक संस्कारवान परिवार मिला था, जिसके फल स्वरूप उन्हें उपयुक्त गुरु श्री रामकृष्ण देव मिले और उनके चहुमुखी व्यक्तित्व और शौर्य का विकास हुआ। उनकी प्रतिभा बचपन से ही दिखने लगी थी। निराला था उनका बचपन। बालक नरेंद्रनाथ की सभी बातें निराली थीं। वे चंचल, नटखट, शरारती तो थे, पर साथ ही भावुक भी थे। अगर बालक नरेंद्रनाथ के मन में कोई बात घर कर जाती, तो उसे पूरा किए बिना वे नहीं मानते। कभी-कभी वे चुपचाप किसी सोच में उलझ जाते। उन्हें समय, भूख, प्यास का ध्यान नहीं रहता था। उनका सबसे ज्यादा मनपसंद काम था गाड़ी पर सवार होकर घूमने जाना। उस समय घोड़ा गाड़ी यानी बग्घी का जमाना था।
1: माँ की गोद में बैठकर गाड़ी में से दोनों ओर की चीजें देखते हुए एक के बाद दूसरा प्रश्न पूछते हुए बालक माता को हैरान कर डालता था।
2: माँ, माँ, उधर वह सुंदर बंगला किसका है?
3: वो तो मजुमदार महाशय का है। बड़े नामी वकील हैं वे।
2: अरे अरे देखो तो माँ, वो आदमी क्या बेच रहा है?
3: उस फल को जामरूल कहते हैं। एक दिन ना मैं तुम्हें वो फल खरीद कर खिलाऊंगी, ठीक है?
2: अच्छा माँ, माँ वो आदमी ऐसे फटे गंदे कपड़े पहनकर लोगों से क्या मांग रहा है?
3: अरे वो तो गरीब भिखमंगा है बेटा, लोगों से पैसे मांग रहा है।
2: क्यों, उसके पास पैसे नहीं है?
3: नहीं बेटा। अरे कोचवान, कोचवान जरा गाड़ी तो रोको जल्दी। लो बिले, उसे ये पैसे दे दो, भूखा लग रहा है।
2: हाँ दो, ये लो बाबा, कुछ खा लेना।
3: चलो चलो कोचवान चलो।
2: माँ लोग गरीब क्यों होते हैं? मेरे पास जब ढेर सारा पैसा हो जाएगा तो मैं इन सबको बांट दूंगा, कोई भूखा नहीं रहेगा।
3: हाँ बेटा, हमेशा मन में ऐसा ही दया भाव बनाए रखना, गरीबों की मदद करना।
2: अच्छा माँ।
3: ओ बिले, दो घड़ी चुप नहीं रह सकता, चुपचाप बैठे रहो।
0: गाड़ी से नरेन को इतना प्रेम था कि रोज अपने घर के सामने बैठकर आते जाते हर एक गाड़ी को बड़े ध्यान से देखा करते। कोचवान का छाती फुलाकर बैठना, तेज दौड़ते घोड़े की लगाम को खींचकर उसे हांकने का कौशल, उसकी खास पोशाक, चपरास, जरीदार पगड़ी आदि का उसके बालक मन पर विशेष प्रभाव पड़ा। तभी तो एक दिन पिता के ये पूछने पर,
4: बड़ा होने पर क्या बनेगा नरेन, बोल तो।
2: घोड़े का कोचवान बनूंगा।
0: पिता हंसने लगे। कोचवान बनने की आशा से बालक ने अपने पिताजी के बूढ़े कोचवान के साथ मित्रता कर ली थी और मौका मिलते ही अस्तबल में जाकर वो सईफ और कोचवानों के कामों को देखा करता और हजारों सवाल किया करता। सईफ से पूछता,
2: तुम रोज रोज घोड़े की मालिश क्यों करते हो?
5: भैया, इससे घोड़ा ताकतवर और तेज दौड़ने वाला बनता है।
2: अच्छा, तो मालिश करवाने पर मैं भी ताकतवर और तेज तर्रार बन जाऊंगा?
5: हाँ बेटा, खूब मालिश और कसरत करना, फिर देखना तुम्हारा शरीर कितना गठीला बन जाएगा।
1: बालक विवेकानंद को शरीर मजबूत बनाने का पहला पाठ शायद यहीं से मिला था। वो कोचवान से भी सवाल पूछता।
2: कोचवान जी, तुम हर दिन ये किस भगवान की पूजा करते हो?
6: बेटा, ये भगवान राम जी और सीता मैया हैं बेटा, और ये हैं हनुमान जी।
2: तुम इनकी पूजा क्यों करते हो? हमारे घर के पूजा घर में तो ये मूर्तियाँ नहीं हैं।
6: अरे तो क्या हुआ बेटा, मालकिन शिव शंकर की भक्त हैं, इसीलिए शिव पूजा करती हैं। पर वे रोजाना रामायण का पाठ तो करती हैं, यही उनकी पूजा है।
0: दत्त भवन में प्रायः प्रतिदिन दोपहर को रामायण तथा महाभारत की कथा होती थी। भुवनेश्वरी देवी स्वयं या कोई और महिला पाठ करती।

0: घर का काम खत्म कर दूसरी स्त्रियां पाठिका को घेर कर बैठ जाती। इसी छोटी सी महिला सभा में बालक नरेन शांत होकर माँ की गोद में बैठा रहता। अक्सर भुवनेश्वरी देवी बेटे को गोद में बैठाकर सीताराम की कहानी, महाभारत की कथा या अन्य पौराणिक कहानियां सुनाया करती।
1: इसमें संदेह नहीं कि पुराणों की कहानियों का बालक के मन पर गंभीर प्रभाव पड़ा था। सुदूर अतीत युग के धर्मवीरों की पवित्र जीवनियां सुनकर उसके शिशु हृदय में न मालूम भावों की क्या क्या लहरें उठा करती, जिससे वह अपनी स्वाभाविक चंचलता छोड़ घंटों मंत्र मुग्ध जैसा बैठा रहता था। रामायण सुनते सुनते नरेन का सरल शिशु हृदय भक्ति रस से परिपूर्ण हो उठता।
0: एक बार उनके घर के पास ही मेला लगा था। बालक नरेन अपने घर के पुराने नौकर रामू और दोस्तों के साथ मेला देखने गया था।
2: झूला झूला तो झूला
3: अरे अरे मुन्ना, जरा इधर तो आ, झूला बाद में झूल लेना।
4: अरे तू इधर आ जा।
3: नहीं, मुझे उस ऊंची चक्री पर नहीं घूमना, तू पहले इधर आ। ये देख कितनी सुंदर मूर्तियाँ बिक रही हैं। ये शिव की मूर्ति? नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, घर में है तो। ये किसकी है? लक्ष्मी नारायण की? नहीं, ये भी नहीं, मुझे वह दिखाओ। ये कौन है?
5: राम जी और सीता मैया हैं।
3: दिखाओ दिखाओ। हाँ, मुझे यही मूर्ति चाहिए। रामू काका, इसे पैसे दे दो ना, मुझे यही मूर्ति खरीदनी है।
6: क्या करोगे बेटा इस मूर्ति का? चलो जलेबी खरीद देते हैं तुम लोगों को।
3: जलेबी वलेबी मुझे नहीं खाना, तुम खाओ, मुझे तो बस यही मूर्ति चाहिए।
6: ठीक है। अच्छा बाबा, अब जिद कर रहे हो तो ले लो। लो भैया, ये पैसे ले लो। अच्छा कितने का है? हाँ, 2 पैसा? अरे नहीं, ये तो 1-1 पैसे में बिकता है।
3: रामू काका मांग रहा है तो दे दो ना 2 पैसे, गरीब है बेचारा।
6: हाँ, गरीब है बेचारा। अरे बहू जी नाराज होंगी।
3: नहीं नहीं, मैं माँ को समझा दूंगा, तुम तो ले लो।
6: अच्छा ले लो भैया 2 पैसे। हाँ नहीं तो लूट मार मचा रखा है। अब बच्चा जिद कर रहा है तो लेना ही पड़ेगा ना। हाँ चलो, ठीक से कागज में लपेट कर बांध दो।
7: हाँ बांधता हूँ, रुक जाओ।
6: अरे मिट्टी का है ना, टूट ना जाए। चलो दे दो। चलो बेटा ले लो। चलो चलो चलो चलो।
1: मूर्ति लाकर नरेन ने मकान के छत पर एक सुनसान कमरे में उसकी स्थापना कर दी। रोज उस मूर्ति के सामने ध्यान मग्न होकर बैठा रहता बालक नरेन। सीताराम के प्रति बालक का यह प्रेम उनके पश्चिम देशीय कोचवान मित्र को बहुत आनंददायक लगा। सीताराम के बारे में बालक के हजारों प्रश्नों का जवाब वह प्रसन्नता पूर्वक देता था।
3: अच्छा, राम जी को राक्षसों से डर नहीं लगता था?
8: नहीं बेटा, वे तो बहुत वीर और साहसी थे। मुनि वशिष्ठ के आश्रम में उत्पाद मचाने वाले सारे राक्षसों को राम जी ने मार भगाया था, और उस समय वे तुमसे थोड़े ही बड़े रहे होंगे।
3: अच्छा, अगर मैं धनुष विद्या सीख लूं तो क्या मैं भी राक्षसों को मार सकूंगा?
8: हाँ हाँ मेरा राजा बेटा, बड़ा होकर न जाने कितने राक्षसों से लड़ेगा, उन्हें मार भगाएगा।
3: पर राम जी जंगल में क्यों चले गए? मना क्यों नहीं किया? उन्हें डर नहीं लगा क्या?
8: बेटा, राम जी माता कैकेयी को बहुत प्यार करते थे, और पिता दशरथ को तो वे देवता समान पूजते थे। इन दोनों का कहा भला वे कैसे न मानते? माता पिता की भक्ति करना तो कोई राम जी से सीखे।
3: अच्छा, जंगल में वो लोग खाते क्या थे? उनके साथ क्या कोई रसोईया भी गया था?
8: नहीं बेटा, वे तो खाली हाथ ही चले गए थे। जंगल में फल फूल खाकर ही गुजारा करते थे।
3: अच्छा, राम जी इतना अच्छा धनुष चलाते थे तो वे सोने के हिरण को पकड़ क्यों नहीं पाए?
8: बेटा, अब वो कोई असली हिरण थोड़ा ही था, वह तो माया थी माया। और राम जी को रावण का वध करना होगा, लोगों को उसके अत्याचार से बचाना होगा। यह सब तो पहले से ही तय था, तभी तो यह माया हिरण का दिखना, सीता हरण और राम रावण का युद्ध हुआ।
3: अगर राम जी सीता को साथ ना ले जाते तब तो यह सब झंझट ही नहीं होता।
0: कोचवान किसी कारणवश शादी विवाह के खिलाफ था, उसने नरेन को समझाया।
8: अब क्या बताएं बेटवा, ये औरतें ही तो सारी मुसीबत की जड़ है। न जाती सीता मैया तो राम जी को इतना परेशान ना होना पड़ता।
1: कोचवान ने विवाहित जीवन की अशांति का ऐसा जीता जागता वर्णन किया कि बालक नरेंद्रनाथ के सुकुमार चित्त पर उसकी छाप गंभीर रूप से अंकित हो गई। उसके मन में अनेक चिंताएं उठने लगी और बेचैन होकर आंखों में आंसू भरे वे माँ के पास आए। आंसू देखकर माँ ने पूछा,
9: क्या हुआ बिले, किसी ने कुछ कहा क्या?
3: माँ, मैं कभी शादी नहीं करूंगा।
9: क्यों, अचानक ऐसी बातें क्यों, क्या हुआ?
3: मुझे मालूम है शादी होने के बाद आदमी को अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है।
0: नरेन ने माँ को कोचवान से सुनी हुई सारी बातें कह दी।
9: ठीक है बाबा, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, और अभी कौन तेरी शादी करवा रहा है, जब बड़ा होगा तो देखी जाएगी। जा, अब जाकर खेल, ये कोचवान भी।
3: मेरी शादी की बात कौन कर रहा है, मैं तो दूसरी बात से परेशान हूँ।
9: अब कौन सी बात लेकर परेशान है?
3: मैं राम सीता की पूजा कैसे करूँ, सीता तो राम की पत्नी थी ना।
9: अरे बिले, तू तो मुझे पागल ही कर देगा, तू और तेरे सवालों का जवाब देते देते तो मैं इधर आना मेरे पास, आजा आंसू पोंछ ले, ला मैं पोंछ देती हूँ, ले बेटा आजा आजा मेरा बच्चा। राम सीता की पूजा न भी करो तो क्या है, कोई बात नहीं मेरा बच्चा।
0: नरेन कमरे से निकल आया, उसका मन अब तक शांत नहीं हुआ था। वो छत के कमरे से अपनी प्रिय राम सीता की मूर्ति को हाथों में उठा लाया और छत पर आकर खड़ा हो गया। संध्या हो चली थी, नरेन हाथों में मूर्ति लिए कुछ सोच रहा था। अंततः वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचा और कहा,
3: माफ करना राम जी, माफ करना सीता मैया, मैं आप दोनों का भक्त हूँ, श्रद्धा भी रखता हूँ, पर विवाहित जीवन वो मेरा आदर्श नहीं है, मैं आप दोनों की पूजा नहीं कर सकता।
0: कहते कहते वो व्याकुल हो उठा और मूर्ति को माथे से लगाकर नीचे फेंक दी।
1: दत्त भवन में अरसे से माने जाने वाले देशाचार और लोकाचार के छोटे छोटे नियमों को नरेन बचपन से ही नहीं मानता था। माँ के डांटने पर वो तुरंत उन नियमों का कारण पूछ बैठता।
9: ए, ए बिले, अरे अरे अरे, ये क्या कर रहा है? भात खाते खाते बदन पर हाथ लगा रहा था।
3: क्यों, क्यों नहीं लगा सकता, इस थाली में क्या बुराई है?
9: अरे वो भात की थाली है, झूठा है ना?
3: झूठा, भात थाली में डालने से थाली झूठी हो जाती है?
9: हाँ।
3: तो भात पेट में जाकर शरीर को भी झूठा कर देता है, फिर तुम मेरे झूठे शरीर को गोद में लेकर प्यार कैसे करते हो?
9: बिले बकवास मत कर, जो कहती हूँ सुना कर।
3: अच्छा माँ, तुम भी तो भात खाती हो, फिर उस झूठे शरीर से शिवजी की पूजा कैसे करती हो?
9: सुन लो इसकी बातें, चल खा लिया ना, चल चल उठ उठ, चल पानी पी ले। अरे अरे अरे अरे अरे अरे, बाएं से नहीं दाहिने हाथ से गिलास पकड़।
3: क्यों, अब बाएं हाथ में क्या हुआ? खाना तो दाहिने हाथ से खाया ना, और फिर बाएं दाएं में क्या फर्क है?
9: बहुत फर्क है, कोई भी अच्छा काम बाएं से नहीं किया जाता, समझे? हमेशा दाहिने हाथ से ही पानी पिया जाता है।
3: नहीं, मैं तो बाएं से ही पीऊंगा, देखता हूँ क्या होता है। क्या तुम्हारे शिव जी नाराज हो जाएंगे?
9: ओह, अब तेरे साथ कौन मुंह लड़ाए, चल उठ जा, उठकर दोनों हाथों को अच्छी तरह धो ले, चल चल चल चल चल, आ जा।
0: बालक नरेंद्र का मन एक ही तरह के खेल कूद में नहीं लगता था, वो हमेशा वैचित्र में नए नए खेलों की इजाद करते रहते थे। उनके साथी भी प्रबल उत्साह के साथ अपने नेता के साथ नए खेलों में जुट जाते। एक बार नरेंद्र का मन पुराने खेल से ऊब गया। उन्होंने झिल्ली कागज का एक रंगीन लालटेन बनाया और उसके अंदर मोमबत्ती जलाकर दीवार पर तरह तरह की आकृतियां बनाकर दोस्तों का मनोरंजन करने लगे। शाम को जब घरों में लालटेन जलाया जाता तो वे भाई बहनों को दीवार पर हाथों की परछाई से कई तरह के जानवरों और चिड़ियों की आकृतियां बनाकर दिखाते थे।
1: इसी समय उनके मन में पाक विद्या सीखने का विचार आया। उन्होंने अपने साथियों से कहा कि जिससे जितना बन सके रसोई का सामान इकट्ठा कर लाए। सभी एक दो आलू बैंगन आदि घर से ले आए। ज्यादातर सामान चूल्हा कड़ाही बर्तन और तेल मसाला नरेंद्र अपनी रसोई से मांग लाए। दोस्तों ने मिलकर बड़े उत्साह से खाना पकाया और उस अधपके भोजन को बड़े चाव से खाया। कहना ना होगा कि नरेंद्र ही प्रधान रसोईया बने और दूसरे बच्चों ने उनकी सहायता की।
0: यद्यपि बालक नरेंद्र नाथ शरारत करने में सबसे आगे थे, पर उनमें अशुभ या अन्याय की कोई मनसा नहीं होती थी। उनका सहज सरल स्वभाव सांसारिक कुटिलताओं से दूर रहता था। सत्यवादिता उनके जीवन का सार था। भले ही वे दिन भर विभिन्न खेलों और हास्य विनोद में मग्न रहते, पर रात को उन्होंने ध्यान करना शुरू कर दिया था। शीघ्र ही उन्हें कुछ अद्भुत दर्शन प्राप्त होते, जिक्र उन्होंने बड़े होने पर किया था। जैसे जैसे नरेंद्र की उम्र बढ़ी, उनकी मानसिकता में एक सुस्पष्ट परिवर्तन देखा गया। वे अब बौद्धिक कार्यों को प्राथमिकता देने लगे। उन्होंने पुस्तकों का अध्ययन प्रारंभ किया, नियमित रूप से अखबार पढ़ने लगे और किसी के साथ भी सार्वजनिक भाषण सुनने जाते, और जो कुछ सुनाते उसका सार अपनी मौलिक आलोचना के साथ अपने दोस्तों को सुनाते। वे लोग कुछ समझते कुछ नहीं समझते, पर नरेंद्र की बातें वे चमत्कृत होकर सुनते। इस तरह उन्होंने एक ऐसी तर्क शक्ति का विकास किया जिसका सामना कोई नहीं कर सकता था।
1: बचपन में एक बार नरेंद्र के साथ उनके एक सहपाठी की मारपीट हो गई थी। नरेंद्र टिफिन में मिठाई लाए थे। उनके सहपाठी ने, जो उनसे उम्र और ताकत में बड़ा था, नरेंद्र के हाथ से मिठाई छीन ली। मारा मारी शुरू हो गई। नरेंद्र मिठाई वापस नहीं ले पाए और भयंकर नाराज हो गए। मास्टर साहब को शिकायत करने पर उन्होंने समझाया,
5: छी छी छी छी छी छी नरेंद्र, तुम इतने बड़े घर के बेटे हो, तुम्हें एक मिठाई के लिए मारा मारी करना शोभा नहीं देता। फिर वह लड़का किस घर का है, उसकी छीनी हुई मिठाई क्या तुम दोबारा खा सकते थे?
3: क्यों क्यों नहीं खा सकते थे? वह मुझसे ज्यादा बड़ा है, इसलिए मैं जीत नहीं पाया। नहीं तो क्या मैं उसे वह मिठाई खाने देता?
5: नरेंद्र, कहा ना, उसका छुआ तुम नहीं खा सकते।
3: क्यों, क्या है, क्या है उसके हाथों में? उसके साथ एक ही क्लास में पढ़ सकता हूँ, खेल सकता हूँ, तो उसका छुआ खा क्यों नहीं सकता?
0: नरेंद्रनाथ ने अपने संपूर्ण जीवन में ये सब आचार व्यवहार छुआछूत कभी नहीं माना। बड़े होने पर एक बार इस दाएं बाएं झूठा और छुआछूत के प्रसंग में भयंकर नाराज होकर कहा था,
10: आप लोगों का पूरा ध्यान इन्हीं तुच्छ विषयों में ही लगा है कि हम पानी किस हाथ से पिए, किस किस को हम छू सकते हैं और इन नियमों के भंग होने पर कौन कौन से प्रायश्चित होने चाहिए। पहले तो हम भगवान का निवास ऊपर स्वर्ग में या नीचे मानव हृदय में समझते थे, पर अब जान पड़ता है कि वे रसोई घर व रसोई के बर्तनों में निवास करने लगे हैं। हमारा सर्वोच्च लक्ष्य है उदार बनना और कूप मंडूकता को त्याग कर बाहर आना, आत्मसात करना और खुद को सार्वभौमिक बना देना। पर हम तो अपने को नित्य लघुतर बनाते जा रहे हैं और शास्त्रों के आदेश के विपरीत अपने को सबसे अलग करते जा रहे हैं। हम अपने देशवासियों से ही नहीं जुड़ पा रहे हैं, अलग अलग टुकड़ों में बंटकर आप क्या हासिल करना चाहते हैं? मुक्ति? मुक्ति अलगाव में नहीं जुड़ाव में है। अपनी मुक्ति चाहते हो तो इन संकीर्णताओं से ऊपर उठो, तभी तुम्हारी मुक्ति होगी, देश की समाज की मुक्ति होगी, देश की समाज की मुक्ति होगी।

0: अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। आलेख डॉक्टर पापिया दास गुप्ता, निर्देशन चैतन्य भट्ट, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वरा संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
1: युग प्रवर्तक स्वामी विवेकानंद ऐकलात। हा कार्यक्रम स्वराज संस्थान संचालनालय यांच्या सहकार्याने विद्यावाणी सामुदायिक रेडिओवरून प्रसारित करण्यात आला। ऐकत रहा विद्यावाणी 107.4 FM।
2: वयाची अट नाही, शिक्षणाचं बंधन नाही, आवाजाची चाचणी नाही आणि अनुभवाची गरज देखील नाही। विद्यावाणी रेडिओचं एकच तंत्र, सर्वांना संधी हाच मंत्र।

0: विनोबा की माँ। विनिया की स्मृति में बसी माँ, विनिया की माँ रखुमाई, देखने में सुंदर थी। गोरा वर्ण, बड़ी बड़ी आंखें, सुघर शरीर, खास पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी उनकी बुद्धि तीक्ष्ण थी। वे चतुर थी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, वैसे वैसे उनमें भक्ति और वैराग्य की भावना भी उत्तरोत्तर बढ़ती गई। गहने तो बहुत पहनती ही नहीं थी, कपड़ों में भी आवश्यकता से अधिक नहीं रखती थी। रोज बड़े तड़के उठकर चक्की पीसती और संतों के पद अभंग गुनगुनाया करती। भक्ति के भजन गाने में वे इतनी तन्मय हो जाती थी कि कभी कभी तो दाल सब्जी में नमक डालना ही भूल जाती या दोबारा डाल देती। ईश्वर पर अडिग श्रद्धा, कर्तव्य परायणता, प्रभु भक्ति के साथ साथ संसार के प्रति जल, कमलवत, अनासक्ति, ये उनके मुख्य गुण थे। विनोबा का जीवन बनाने में माँ की बड़ी महत्वपूर्ण देन है। विनोबा की आंखों में से आज भी माँ की याद आते ही आंसुओं की धारा बहने लगती है। वे आंसू नहीं है, वे है माँ के चरणों में उसके अनंत उपकारों का अभिवादन। माँ के बारे में विनोबा जी कहते हैं,
1: मुझ पर जो संस्कार हैं वो माँ के हैं, जिसके लिए दूसरी उपमा नहीं है। मुझे अनुभव से भरे बहुत से ग्रंथ पढ़ने को मिले हैं और सत्संगति भी प्राप्त हुई है। उन सबको तराजू के एक पल्ले में रखकर दूसरे पल्ले में मुझे जो ये साक्षात भक्ति की शिक्षा मिली, उस दर्शन को रखकर तौलता हूँ तो दर्शन का वजन बाकी सब चीज़ों से बढ़ जाता है। मैं माँ का बेटा हूँ। होते हैं कुछ बच्चे माँ के, कुछ पिता के, कुछ दादा के, वैसे ही मैं माँ का। यही मेरी सही पहचान है। अर्थात मेरे जीवन पर माँ का जितना परिणाम हुआ है उतना किसी और का नहीं। उसने लगाई हुई आदतें, उसने दिखाई हुई दिशा, उसने बताई हुई बातें, इन सब का इतना उपयोग होता है उतना किसी भी बात का नहीं होता। स्त्रियों की तरफ देखने का दृष्टिकोण भी वैसा ही बना। मैं हमेशा स्त्रियों को मात्र दृष्टि से ही देखता आया हूँ। गीता का अनुवाद मैंने किया और उसे गीताई नाम दिया। संसार में कहीं भी आश्रय अगर ना भी मिले, परंतु माँ के आंचल में आश्रय सदैव ही मिलता है। माँ परम भक्त थी। घर के सभी लोगों को खिला पिला कर, घर के सब कामों को निपटा कर, स्वयं कुछ ना खाते हुए भगवान के सामने बैठकर उनकी विधिवत पूजा करती थी। और पूजा समाप्त होने पर जब वो भगवान को प्रणाम करती थी तब उसके भक्त हृदय के दर्शन होते थे। प्रणाम करने के बाद अपने दोनों कान पकड़कर कहती थी,
2: हे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, मेरे अपराध क्षमा कर।

विशेष दिन हमारे भी आंखों से आंसू आते थे। वो विशेष दिन होता है, वातावरण श्रद्धा भाव वाला हो जाता है, मूर्ति सामने होती है, उसे देखकर अश्रुधारा का बहना स्वाभाविक है। किंतु हर दिन की पूजा में इस प्रकार अश्रुओं का बहना मैंने देखा है और ये भक्ति के अलावा संभव ही नहीं हो सकता। मैं रात को सबके पास सोती और तड़के भोर के समय सबसे पहले जागती थी। बड़े तड़के चक्की पर आटा पीसते हुए मधुर भजनों को गाती थी। हम बच्चों को उसके कारण कितना ज्ञान मिला वो याद कर आंखें आज भर जाती हैं। कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग, ये तीनों इस तड़के की पिसाई में एक रूप हो जाते थे। माँ के वे भोर के आटा पिसाई के वक्त गाए भजन आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं।

0: विनोबा जी की मां सर्वसामान्य संस्कार कार्य में लीन थी। दिन भर काम करती, उनका सारा ध्यान ईश्वर भाव से भरा रहता था। वो सांसारिक थी, परंतु उसके हृदय में, उसके वाणी में कभी सांसारिक बातें नहीं थी। उनके मुख से भी कटु शब्द सुना नहीं। सवेरे उठने के साथ ही उनका ईश्वर नाम स्मरण शुरू होता था। आटा पीसने बैठती तो ईश्वर का भजन गाती। जो भजन गाती वे सब ईश्वर के होते और वे उतने ही प्रेम और तन्मय भक्ति से गाती थी। उनकी आवाज बहुत ही मीठी और मधुर थी। उसकी विशेषता ये थी कि वे बहुत तन्मयता से गाती थी। विनोबा जी ने एक दिन माँ से कहा,
1: माँ रोज नया भजन गाओ, कल का आज नहीं, आज का कल नहीं। ये कार्यक्रम तकरीबन 6 महीने चला और माँ ने रोज नया भजन सुनाया। इतने भजन उसे मौखिक याद थे। वो कर्नाटक की थी, उनका मायका कर्नाटक का था, इसकी वजह से उन्हें कन्नड़ कर्नाटकी भजन भी आते थे। पुरंदर दास का भजन वो बहुत ही मधुर स्वर में गाती थी, जिसका अर्थ था, मुझे भी कसम है भगवान, तुझे भी कसम है और हम दोनों भक्तों की कसम है, तुम्हें छोड़कर किसी दूसरे की शरण में जाऊं तो मुझे कसम, और अगर तुमने मेरा हाथ छोड़ा तो तुम्हें कसम। उनका दूसरा मराठी भजन भी मुझे खूब याद है।
0: विनोबा जी की माँ स्नान, रसोई इत्यादि काम जब करती थी तो वो भजन गुनगुनाते हुए कामों में तल्लीन हो जाया करती थी। परिणाम ये कि वो या तो रसोई में नमक डालना भूल जाती या कभी कभी रसोई में 2 बार नमक डाल देती। वे सबको खिलाकर अंत में भगवान की पूजा करके भोजन करती थी और विनोबा जी सबसे पहले भोजन किया करते थे, परंतु भोजन की तरफ ध्यान ही नहीं रहता था। जो थाली में परोसा, जो सामने आया उसे खाते थे और निकल जाते थे। उन्हें नमक का कम या अधिक होना पता ही नहीं चलता था। जब पिताजी भोजन को बैठते तो तुरंत कहते,
2: अरे कितना ज्यादा नमक डाल दिया है।
3: ठीक ही होगा, विनय तो भोजन करके गया, कुछ बोला नहीं।
2: अरे तेरे विनय को कुछ विज्ञान मालूम ही नहीं।
1: माँ शाम को जब मुझसे पूछती सब्जी में नमक ज्यादा था, तूने मुझे बताया क्यों नहीं, तो मैं सीधा बोल देता, आप ही क्यों नहीं चख लेती पहले, थोड़ा सा चखना चाहिए ना।
0: परंतु भगवान की पूजा करने से पहले खाना उन्हें पसंद नहीं था। माँ पिता का बहुत आदर करती थी, परंतु विनोबा जी को वो विशेष मानती थी। एक बार माँ ने चावल के 1 लाख दाने ईश्वर को समर्पित करने का संकल्प किया। रोज चावल गिनने का कार्यक्रम चला। भगवान के चरणों में अक्षत चावल ही चढ़ा सकते हैं, इसीलिए खंडित चावल को अलग करते जाना ये उनका नित्य क्रम बन गया। पिता थे वैज्ञानिक, माँ को रोज ये चावल गिनने का कार्यक्रम करते देखते रहे। एक दिन उन्होंने कहा,
2: अरे यह तुम क्या एक एक दाना गिनती हो, 1 तोला चावल तोल कर उसमें कितने चावल है यह गिन लो और फिर हिसाब करके 1 लाख चावल कर लो तो बस है। उसमें 1/2 तोला चावल अधिक डाल देना ताकि कम पड़ने का डर ही न रहे, थोड़ा ज्यादा रहे तो ठीक ही है।
0: माँ पिताजी को जवाब नहीं दे पाई।

0: परंतु उनकी बात से वो सहमत नहीं हो सकी। विनू जब बाहर से लौटा तब माँ ने उससे पूछा,
1: विनया, यह लाख चावल गिन गिन कर अर्पण करने के पीछे क्या रहस्य है, यह तो बता।
2: मैं कहता था,
3: तुम जो एक एक दाना गिनकर ईश्वर को चढ़ाती हो वो गणित का काम नहीं, वो तो भक्ति है। दाने गिनते समय ईश्वर चरणों में जो तद्रूपता सधती है, भगवान का जो स्मरण होता है, उसी का तो महत्व है। तराजू में तौल लेने से ये चीज थोड़े ही सधने वाली है।
0: माँ का समाधान हो गया। उस रात पिताजी को भी निरुत्तर कर देने वाला जवाब मिल गया। अपनी ओर से शत प्रतिशत पुरुषार्थ और भक्ति की अखंड धारा बहाते हुए भी आखिरी विश्वास माँ का ईश्वर की चाह पर था। माँ रोज रात को दूध में जोरन डालते समय परमेश्वर का नाम लेती। एक बार विनोबा ने पूछा,
3: माँ, दही जमाने में भी भगवान लाने की क्या जरूरत है?
1: बेटा, हमने अपनी ओर से भले पूरी तैयारी कर ली हो, फिर भी दही तो तभी जमेगा जब भगवान की कृपा होगी, इसलिए मैं भगवान का नाम लेती हूँ।
0: मनुष्य का यत्न और ईश्वर की कृपा। नागपंचमी का दिन आता। माँ विनया को नाग देवता का चित्र बनाने के लिए कहती। विनु कुमकुम का नाग बना देता, परंतु वो उतना अच्छा न बन पाता। तो विनु कहता,
3: माँ, बाजार में सुंदर चित्र मिलता है।
1: सुंदर हो तो भी वह निकम्मा है, वह मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो अपने बेटे के हाथ से खींचा हुआ चित्र चाहिए।
0: उस माँ का विनोबा पर बहुत बड़ा उपकार है, जिसने उन्हें दूध पिलाया, अन्न खिलाया, रात रात भर जागकर बीमारी में शुश्रूषा की, किंतु मानव आचार धर्म की शिक्षा देकर सबसे बड़ा उपकार किया। इस संदर्भ में विनोबा जी बताते हैं,
3: माँ ने बचपन में मुझसे तुलसी को जल चढ़ाने का नियम करवा लिया था। एक बार जब मैं नहाकर खाना खाने बैठा तो माँ ने सवाल किया, तुलसी को जल चढ़ाया? मैंने कहा नहीं। तुरंत बोली, पहले जल चढ़ा कर आओ, फिर तुम्हें खाना देती हूँ।
0: गागोदे के घर के आंगन में कटहल का एक पेड़ था। हरे भरे पेड़ की पत्तियों में जब से फूल बैठने लगे थे, तभी से घर के बच्चे मीठे फल खाने के स्वप्न देखना शुरू करते थे। जब शाखाओं पर छोटे छोटे फल दिखने लग जाते, तब से ही सब फल पकने की राह देखते रहते। रोज माँ से पूछते कि क्या अब ये फल उतारने लायक हो गया है। यो कहते कहते वह दिन आ जाता जब फल उतारने लायक हो जाता। जब उसके फल तैयार हो जाते तो विनया सहित सब बच्चे अत्यंत उत्साहित होकर इकट्ठे हो जाते। कोई पेड़ पर चढ़ जाता, कोई हाथ फैलाकर खड़ा रहता, कोई घर में थाली और चाकू लाने दौड़ता। इस तरह बच्चों की दुनिया में हलचल मच जाती। बड़े उत्साह के साथ फल उतारा जाता। सब बच्चों को इर्द गिर्द बैठा कर फल काटा जाता था और फिर सब में बांटे जाने का क्षण आते ही सबके मुंह में पानी भर आता था। इतने में माँ अंदर से प्रकट हो जाती थी। वे कहती थी,
1: ठहरो बच्चों, यह फल इस तरह खाया नहीं जाता, क्योंकि इस ऋतु का यह पहला फल है, इसे बांटना होता है, बचे तो खा सकते हैं। देखो प्यारे बच्चों, तुम लोग देव बनना पसंद करोगे कि राक्षस?
4: कैसा बेतू का सवाल है अम्मा का, भला राक्षस बनना कौन पसंद करेगा? निसंशय हम देव बनेंगे।
5: हम देव बनेंगे।
1: तो तुम जानते हो देव कौन होते हैं और राक्षस कौन होते हैं?
5: जो स्वर्ग में रहते हैं वे देव, जो नर्क में रहते हैं वे राक्षस।
1: नहीं नहीं, देव और राक्षस यही इसी पृथ्वी पर होते हैं। मानव से ये दोनों बनते हैं, जो देता है वह देव बनता है और जो रखता है वह राक्षस बनता है। बोलो बच्चों, तुम क्या बनोगे, देव या राक्षस?
5: हम देव बनेंगे, देव बनेंगे, देव बनेंगे।
1: तब फिर यह फल सबको देकर खाओगे ना?
5: जरूर जरूर।
0: और फिर एक एक टुकड़ा लेकर बच्चे पड़ोस में बांटने निकल पड़ते। खुश होकर सब में बांटते हुए कहते, लीजिए ये हमारे कटहल के पहले फल का प्रसाद। और फिर सब लोगों में बांटकर जो कुछ थोड़े इन्हें गिने टुकड़े बच जाते, उसे भाई बहन आपस में बांट लेते थे। उन छोटे छोटे टुकड़ों को मुंह में चबाते हुए बच्चों की कोमल आंखों में देवत्व की नई झलक दिखाई पड़ती। बांट कर खाओ, माँ के इस सूत्र संस्कार ने पुत्र के जीवन में एक नई जान भर दी। अपने पड़ोस में कभी कोई स्त्री बीमार पड़ती तो माँ सेवा के लिए दौड़ जाती। कभी आवश्यकता हुई तो अपने घर का खाना पकाकर उसके घर जाकर खाना पका आती। ये देखकर छोटे से विनायक को अचरज लगता। वो मां से पूछ बैठता था,
3: मां तुम बड़ी स्वार्थी दिखती हो, अपने घर की रसोई पहले बनाती हो फिर पड़ोसी की, ऐसा क्यों, इतना स्वार्थ क्यों?
1: विनया तू तो बड़ा मूर्ख है रे, यदि उनकी रसोई पहले बना लो तो उनको फिर ठंडा ही खाना पड़ेगा। पहले अपनी बनाकर फिर उनकी बनाओ तो उनको गरम गरम खाना मिलेगा, यह स्वार्थ नहीं परमार्थ है।
0: बचपन में वीनू को भूत का बहुत डर लगता था। माँ विनया को समझाती थी कि ये भूत वूत कोरी कल्पना है, परमेश्वर के भक्तों को भूत कभी नहीं सताता, राम नाम जपो सब भूत प्रेत भाग जाएंगे। माँ ने इतना कहा तो विनया का डर भाग गया। माँ ने कहा था कि अगर भूत दिखे तो प्रभु का नाम लो और लालटेन लेकर देखो। माँ पर श्रद्धा थी तो वो डर भाग गया। एक दिन की कहानी विनोबा खुद सुनाते हुए कहते हैं,
3: एक बार रात को हम अपनी कोठरी में टहल रहे थे, एक बाजू दिया था तो दीवार पर अपनी ही बड़ी बड़ी छाया दिखती थी। मैं घबरा गया, इतना बड़ा आदमी खड़ा है, इतना लंबा आदमी कभी देखा नहीं। तुरंत दौड़कर माँ के पास चला गया। माँ ने समझाया, बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, वो तो तेरा गुलाम है, तू जैसी आज्ञा करेगा वैसा उसे करना होगा, तू बैठेगा तो वो बैठेगा, तू खड़ा होगा तो वो खड़ा होगा। मैंने सोचा कि देखूं सही है क्या, तब मैं बैठ गया, वो भी बैठ गया, मैं खड़ा रहा वो भी खड़ा हो गया, मैं चलने लगा वो भी चलने लगा, मैं लेट गया वो भी लेट गया, फिर मेरे ध्यान में आया ये तो अपना गुलाम है। इस तरह से मेरा भूत का डर माँ की श्रद्धा से गया और छाया का डर माँ ने बुद्धि से निकाला।
0: दरवाजे पर भिक्षा मांगने वाला विनोबा जी के दर से कभी खाली हाथ नहीं जाता था। एक दिन एक मोटा तगड़ा भिखारी भीख मांगने आया। विनोबा की माँ उसे भिक्षा देने लगी तो विनोबा जी ने माँ से कहा,
3: माँ ये तो मोटा तगड़ा आदमी दिखाई दे रहा है, अगर ऐसे लोगों को भीख देते रहे तो देश में आलस बढ़ जाएगा, अपात्र को दान दिया गया तो दान देने वाले का भी अकल्याण होता है।
1: विनया पात्र अपात्र की परीक्षा करने वाले हम कौन, दरवाजे पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर के स्वरूप मानकर अपनी हैसियत के अनुसार उसे देते रहना, इतना ही हमारा काम है, उसकी परीक्षा लेने वाली मैं कौन।
0: पिताजी का स्वभाव था कि वे किसी न किसी जरूरतमंद को अपने घर पर रखते थे। उन दिनों एक गरीब विद्यार्थी उनके घर पर रहता था। घर में कभी कुछ ठंडा खाना बच जाए तो माँ खुद खा लेती थी या ज्यादा हो तो अपने विनया को देती थी। उस विद्यार्थी को तो वो हमेशा ताजी रोटी परोसती थी, कभी बासी नहीं खिलाती थी। विनया ये तमाशा रोज देखता था। एक दिन उन्होंने माँ से मजाक में पूछा,
3: माँ तू तो हमें कहती है कि सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए, परंतु तेरा भेदभाव अभी तक गया नहीं। देख उस लड़के को तू ठंडा खाना कभी नहीं परोसती और मुझे परोसती रहती है, इतना फर्क तो तू भी करती है ना।
1: बात सही है बेटा, अभी मुझसे तेरे में और दूसरे में भेद हो जाता है, यह मुझ में तेरी आसक्ति है, मेरे हृदय में तेरे लिए पक्षपात है। तू मुझे पुत्र स्वरूप दिखता है जबकि वह लड़का मुझे भगवत स्वरूप दिखे, परंतु आसक्ति के कारण तू मुझे पुत्र स्वरूप दिखता है। जिस दिन भी तू मुझे भगवत स्वरूप दिख पड़ेगा उस दिन यह भेदभाव खत्म हो जाएगा बेटा।
0: महान पुत्र की महान माता का भेदभाव भी कैसा भव्य है। पुत्र के प्रति पुत्र भावना, पर के प्रति भगवत भावना। इसका एक और उदाहरण देते हुए विनोबा जी कहते हैं,
3: एक बार मेरे हाथ में डंडा था और मैं उस डंडे से सामने वाले खंभे को मार रहा था। माँ ने मुझे रोका और बोली, किस लिए उसे मार रहे हो, खंभे में भी ईश्वर का वास होता है, उसे मारना नहीं चाहिए। मैंने अपना हाथ रोका, खंभे को बिना वजह तकलीफ नहीं देनी चाहिए, ये तो भावना है, ये यहाँ की हवा में समाई है। सभी वस्तुओं की ओर भगवत भावना से देखना, यह शिक्षा बचपन में माँ से मिली।